की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की सर्व संत वैष्णव भगवान की सत्य सनातन धर्म की गो माता की भारत माता की

सुरतंत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियावर राम चंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बल दाऊ जी की जय। बोलो भाई सब।

नमः पार्वती पतये हर हर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

नमस्कार, आदाब। ये आकाशवाणी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप सुनते हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं DTH की सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज श्रवण पूर्णिमा है। श्रवण पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और भगवान शिव के भक्तों के लिए इसका विशेष महत्व है। इसी पवित्र अवसर का संबंध श्री अमरनाथ यात्रा से भी गहरा है। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर की खूबसूरत और ऊंची पहाड़ियों में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रोताओं, श्रवण पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। श्रवण का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है और पूर्णिमा का दिन इस महीने की पवित्रता को और भी विशेष बना देता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और निष्ठा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्रावण मास में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। कहीं शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है तो कहीं बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। हर तरफ एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव।

श्रोताओ, कश्मीर की हसीन वादियों से लेकर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक आज हर तरफ बस एक ही नाम की गूंज है। 203 जुलाई को जब इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ था, तब हजारों लाखों भक्तों के दिल में बस एक ही सपना था, बाबा बर्फानी के दर्शन। और देखते ही देखते आज इस पवित्र यात्रा का 97वां दिन आज पहुंचा है। श्रोताओ, आज यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज श्रवण पूर्णिमा का महापवित्र दिन है, रक्षाबंधन का त्योहार है और आज का दिन इस पूरे सफर का सबसे अद्भुत और आस्थामय दिन माना जाता है। आज दशमी अखाड़ा के मुख्य महंत स्वामी दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप पवित्र छड़ी मुबारक अपने पूरे दामजाम और स्वाधु संतों के जत्थों के साथ अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पहुंचेगी। भक्तों का उत्साह देखने लायक है। दोस्तों, पहलगाम के रास्ते से होती हुई ये छड़ी जब पवित्र गुफा के अंदर प्रवेश करेगी, तब वहां का दृश्य देखने योग्य होगा। पवित्र हेम शिवलिंग के सामने छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा, वैदिक मंत्रों के उच्चारण होंगे, पंचामृत से स्नान और श्रृंगार होगा और उसके बाद शुरू होगी महापूजा अर्चना। श्रोताओं, इस विशेष पूजा के साथ ही इस साल की 57 दिनों की ये यादगार और पावन अमरनाथ यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो जाएगी। उन सभी यात्रियों को बधाई जिन्होंने इस कठिन सफर को पूरा किया और उन सभी को भी प्रणाम जो घर बैठकर रेडियो के जरिए बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रोताओं, छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के बारे में जानने के लिए, लेटेस्ट जानकारी हासिल करने के लिए कुछ ही क्षणों में हम हमारे संवाददाता से भी जुड़ेंगे फोन लाइंस के जरिए और जानेंगे कि छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना किस मुहूर्त पर होने वाली है पवित्र गुफा में। कुछ ही क्षणों में हम हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: श्यामाना जी, यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त अमरनाथ यात्रा के मुख्य द्वार यानी पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पर माहौल कैसा है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने ग्राउंड रिपोर्टर तारिक के पास। तारिक, नुनवन बेस कैंप से क्या ताज़ा खबरें हैं और छड़ी मुबारक को लेकर वहां कैसा माहौल है?
1: बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी पवन यात्रा आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आस्था और अकीदत के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रही है
0: जी।
1: इस सिलसिले में आज सुबह पोपटे महंत दीपंदरागिरी जी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पवन यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी पवन अमरनाथ गुफा पहुंच गई है। इस वक्त वहाँ बाजाब्ता तौर पे वो बर्जमान है
0: जी।
1: तो पवन यात्रा के वो जत्थे में साधु संतों के अलावा सिक्योरिटी अधिकार, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल है। गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्र उच्चारण जारी है। इस मौके पर सारे विश्व में अमन भाईचारे और देश की सुरक्षा व खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना भी की जा रही है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी थोड़ी देर बाद बाजाब्ता तौर पे जो अमरनाथ जी यात्रा 2026 का जो रिवायती समापन होगा, तो उस टाइम के बाद छड़ी मुबारक के जो जत्था है वो अभी वापस पंचतरणी की तरफ पहुंच जाएंगे और वहीं रात का विश्राम भी करेंगे। उसके बाद सुबह वो कल सुबह पहलगाम की ओर रवाना होंगे। पहलगाम में वो विश्राम करके अगले दिन महा छड़ी का गौरी शंकर मंदिर के नजदीक लदर नदी में विसर्जन किया जाएगा, जिसके बाद पवन काफिला श्रीनगर के लिए रवाना होगा
0: जी।
1: तो इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें या कैंपों की बात करें, जो हमारे नुनवन बेस कैंप है वहाँ बिल्कुल अब वो वाइंड अप हो चुका है
0: जी।
1: अगर वहाँ कुछ सरकारी जरूरी सरकारी विभाग वहाँ बैठे हुए हैं अभी, जहाँ टेंट वाले थे उन्होंने अपना जो या बाकी जो लंगर वाले थे उन्होंने वो सारा कुछ वाइंड अप किया था
0: जी।
1: धीरे धीरे अभी कुछ विभाग और कुछ सिक्योरिटी एजेंसियां भी वहाँ मौजूद है। तो इसी तरीके से जितने भी लंगर, जितने भी वहाँ कैंप्स थे वो धीरे धीरे वाइंड अप हो रहे हैं। सिर्फ ये जो छड़ी मुबारक के लिए जो इंतजाम है
0: जी।
1: वो बाजाब्ता तौर पे रखा गए हैं, सिक्योरिटी अभी बाकी है। तो इस तरीके से मौसम ने भी बड़ा साथ दिया है आज। तो मौसम की बात करें तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा के तक यात्रा रूट पर आज मौसम अजमी तौर पे बिल्कुल खुशगवार है। धूप निकली हुई है बाला इलाकों में, दिन के अवकात में मौसम धूप से जज्वी तौर पे उबला आलूद भी रह सकता है, जबकि दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिशों का मामूली इम्कान तकरीबन 15% दायर किया गया है। मौसम की

स्वागत है आपका एक बार फिर से श्यामाना जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में। मैं हूं आपके साथ आपकी साथी उद्घोषिका इरम कुरैशी। श्रोताओं, भी हमने जाना कि किस तरह आज 57वें दिन श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा का समापन कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का श्रवण पूर्णिमा के दिन ही समापन क्यों होता है और इस पावन तिथि का अमरनाथ गुफा से क्या पौराणिक संबंध है? श्रोताओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण पूर्णिमा का ये दिन बेहद खास है। यही वो पावन दिन था जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। माता

पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तब भोलेनाथ ने इसी गुफा में जाकर उन्हें अमर कथा सुनाई थी। रास्ते में अपनी हर प्रिय चीज का त्याग किया था भोलेनाथ ने। नंदी को पहलगाम में छोड़ा था, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, नागों को शिशनाग में, गणेश जी को महागुना स्टॉप पर और पांचों तत्वों का त्याग पंचतरणी में किया था। फिर इस अमरनाथ गुफा में आकर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया था। कहते हैं कि कथा सुनते वक्त भगवान शिव ने यह ध्यान रखा था कि कोई भी तीसरा प्राणी वहां ना हो, इसीलिए उन्होंने एक अग्नि का घेरा कर लिया था पवित्र गुफा के आसपास। लेकिन उस गुफा में दो कबूतर थे जिन्होंने ये अमर कथा सुन ली। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को तो नींद आ गई, लेकिन उन कबूतरों ने कथा सुन ली और वो अमर हो गए। श्रोताओं, आज भी माना जाता है कि श्रवण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में उन दो अमर कबूतरों को देखा जाता है और उनके दर्शन होते हैं। आज श्रवण पूर्णिमा के इस पावन दिन पर न सिर्फ एक यात्रा पूरी हो रही है, बल्कि आस्था और प्रेम का वो अमृत भी बरस रहा है जो हजारों सालों से इस गुफा में समाया हुआ है। श्रोताओं, आज रक्षाबंधन भी है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। आप सभी को श्रवण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, श्रवण पूर्णिमा का संबंध प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। ये समय बारिश का मौसम होता है और धरती हरियाली से भर जाती है। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और मंदिरों में बजती घंटियां एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना देती हैं। ये दिन हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन में संतुलन बनाए रखने का भी संदेश देता है। अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में भी श्रावण पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं। किसी के लिए ये पहली यात्रा होती है तो किसी के लिए जिंदगी भर का सपना। लेकिन हर यात्री के दिल में एक ही भावना होती है, बाबा बर्फानी के दर्शन और उनका आशीर्वाद। यात्रा के दौरान कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भक्तों का हौसला उनकी आस्था से मजबूत बना रहता है। एक दूसरे को सहारा देना, जरूरतमंदों की मदद करना और बिना किसी भेदभाव के सेवा करना इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है। श्रोताओं, श्रावण पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और पूर्णिमा का दिन इस महीने की पवित्रता को और भी विशेष बना देता है। श्रोताओं कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और निष्ठा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्रावण मास में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। कहीं शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है तो कहीं बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन छड़ी मुबारक पवित्र गुफा मंदिर पहुंच रही है। वहां पर विराजमान होकर छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के साथ महाआरती महापूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसके साथ ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आध्यात्मिक रूप से समर्पण होगा। श्रोताओ, श्रवण पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम सब यही संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में सच्चाई, दया, सेवा और प्रेम को अपनाएं। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो हम सबको सही रास्ता दिखाएं और हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बज रहे हैं, लिए चल रहे हम आपको आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार जुड़ेंगे आपके साथ इस विशेष प्रसारण में। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: फीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीदाम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़

गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं

0: के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। धन खाता धारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महान दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
4: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया।

0: 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है, पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो। लोकसत्ते की सुर्खी है, ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी। राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड

0: Details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमुई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुकाम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुकाम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमुई तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूरदराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी दरियाई निज़ाम के सरचश्मे के नज़दीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासिरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारिजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारिजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारिजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने

0: आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
1: भारत को अगर यूरेशिया में कॉपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज़्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
0: दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संग मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामा निकार से।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना 60 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें मजमुई तौर पर 3,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रुपए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही या नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद खुसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल JAM की तसलीस जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सर निज़ाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के CEOs, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के CEOs और आला क़यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कैनेडा के मालियात और कौमी महसूलात के वजीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कनाडा के टोरंटो में भारत कनाडा वज़राए खजाना माली और इक्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाजाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महान दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुँचाई गयी और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहाँ पूजा सभा का इनेकाद होगा। श्री मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम सियाफत का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और 4 ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2,00,000 का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलाविन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टलफेन में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही FIH आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की इस हवाले से शह सुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई, 1,500 से ज्यादा अफराद अब भी लापता, सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से राबता मुनक़ता, 250 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुतालिक तस्वीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतालिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा कल से। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अवलियत के साथ शाये किया है कि वज़ीर आज़म ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियाँ अभी से शुरू करने पर जोर दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1,468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोज़ा दौरा करेंगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने

तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप, डीटीएच की सर्विसेज तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओ, 3 जुलाई को जब इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज हुआ था, तब हजारों लाखों भक्तों के दिल में बस एक ही सपना था, बाबा बर्फानी के दर्शन। और देखते ही देखते आज इस पवित्र यात्रा का 57वां दिन आ पहुंचा है। श्रोताओ, आज श्रवण पूर्णिमा के महापवित्र दिन पर हमारी ये पावन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस वक्त अमरनाथ गुफा मंदिर से एक बेहद शुभ और आत्मिक खबर आ रही है। पवित्र छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा पहुंच चुकी है, जहां इस समय मुख्य महंत स्वामी दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में महापूजन का आयोजन हो रहा है। श्रोताओ, अमरनाथ यात्रा में छड़ी मुबारक का स्थान बेहद खास और अनूठा है। पुराने कथाओं की माने तो जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने साथ एक दिव्य छड़ी को धारण किया था। ये छड़ी स्वयं भोलेनाथ की तेज और उनकी दिव्य शक्ति और उनकी अदृश्य उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि इस पवित्र छड़ी के रूप में स्वयं महादेव अपने भक्तों के साथ यात्रा करते हैं।

श्रोताओं, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सदियों पहले संत स्वामी सूर्यानंद जी ने श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा से इस छड़ी मुबारक को हर साल पवित्र गुफा तक ले जाने की परंपरा शुरू की थी। फिर चाहे पहलगाम का रास्ता हो, चंदनवाड़ी हो, शेषनाग हो या पंचतरणी, स्थानीय कश्मीरी भाइयों की सेवा और आपसी भाईचारे की मिसाल बनते हुए ये छड़ी हर साल श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा पहुंचती है। आज पवित्र गुफा में पवित्र हिमशिवलिंग के सामने छड़ी मुबारक को स्थापित किया है। पंचामृत स्नान, श्रृंगार और वैदिक मंत्रों के जाप अभी पवित्र गुफा में चल रहे हैं। इस महादेव्य पूजा के संपन्न होने के साथ ही इस साल की 57 दिनों की ये यादगार अमरनाथ यात्रा आधिकारिक रूप से पूरी हो जाएगी। श्रोताओं, आप सभी भक्तों को इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप नमकम चमकम सुन रहे थे। ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, DTH की सर्विसेज, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की आकाशवाणी आराधना चैनल पर। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस वर्ष ये विशेष प्रसारण और श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ 3 जुलाई को हुआ था और आज 57वें दिन श्री अमरनाथ जी यात्रा अपने समापन को पहुंच रही है और हम भी आपके साथ इस वर्ष आखिरी बार जुड़ रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं लिए। श्रोताओ, चंद ही लम्हों में आप उर्दू में समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ इस विशेष प्रसारण में। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से जुड़ा ये विशेष प्रसारण।

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने तमन्ना जाहिर की है कि यह त्यौहार तमाम तबकों के माबेन आपसी भाईचारे और अमन अखुवत का पैगाम लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला, काबीना वजीर सतीश शर्मा और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी रक्षाबंधन के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी है। रक्षाबंधन के मौके पर ही आज सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा भी रस्मी तौर पर इख्तिताम पजीर हो रही है। इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। गो के मौसम खराब होने के बाद यात्रा को मुअत्तल किया गया था, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक आज अमरनाथ गुफा पहुंचाया जा रहा है, जहां खसूसी प्रार्थना सभा का अहतमाम है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमे की मुनासिबत से आज मसाजिद और खानकाहों में सीरती मजालिस का अहतमाम है। नमाज जुमा से कबल आज अइमे हजरात और खतीब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई गोशों को बयान करेंगे। वादी में नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द होने की तवक्को है, जहां हर नमाज के बाद मौ मुकद्दस आहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जा रही है। वादी कश्मीर के दीगर सभी अजला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलम की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में रूह परवर मजालिस मुनक़द हो रही हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने शहर श्रीनगर में नकल हमल में बेहतरी लाने और ट्रैफिक की गुंजानियत में कमी लाने के लिए शहर के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत उजागर की है। वो मुतलका महकमों की आला सतह की एक मीटिंग में शहर श्रीनगर में मुजवजा सड़क प्रोजेक्टों का जायजा ले रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 अगस्त इतवार को मन की बात के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम का 137वां शुमारा होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर होने के बाद फौरन इस प्रोग्राम का इलाकाई तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। माली शमूलियत के बड़े प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये स्कीम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन शुरू की थी। वजारत खजाना ने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 3,17,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। माना जा रहा है कि जनधन योजना ने लाखों अफराद को इक्तसादी खुद मुख्तारी अता की है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.3 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM बेलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH की विभिन्न सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को आरंभ हुई थी। आज यात्रा का 57वां दिन है और श्रवण पूर्णिमा की पावन पर्व पर छड़ी मुबारक पवित्र गुफा मंदिर पहुंचती है और वहां महापूजन और आरती के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा अपने समापन को पहुंचती है। अभी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की स्थापना हुई है, वहां महापूजन का आयोजन अभी हो रहा है स्वामी देवेंद्र गिरी जी की नेतृत्व में। श्रोताओं, छड़ी मुबारक की यात्रा श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से शुरू होकर आज के दिन पवित्र गुफा पहुंचती है। स्वामी जी के साथ साधु संतों का जोड़ा भी होता है जो पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से होते हुए पवित्र मंदिर गुफा पहुंचते हैं। नागपंचमी में विशेष पूजा और भूमि पूजन के साथ ही छड़ी मुबारक की औपचारिक यात्रा शुभारंभ होती है। दशमी अखाड़ा श्रीनगर से, पहला पड़ाव श्रीनगर से पहलगाम होता है, जहां से श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से जब छड़ी मुबारक निकलती है तो उसके बाद पहलगाम पहुंचती है, जहां पहुंचने से पहले कई सारे मंदिरों में छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना होती है और उसके साथ ही जब गौरीशंकर मंदिर पहुंचती है पहलगाम, तो वहां पर पहला विश्राम होता है छड़ी मुबारक का। दूसरा पड़ाव होता है पहलगाम से चंदनवाड़ी, ये यात्रा भी पैदल होती है। पहलगाम से शुरू होती है ये पैदल यात्रा और छड़ी मुबारक का अगला पड़ाव होता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते हुए कठिन चढ़ाई पार करके जत्था ऐतिहासिक शेषनाग झील के पास पहुंचता है और वहां पर होता है तीसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव के बाद आता है चौथा पड़ाव, शेषनाग से पंचतरणी वाला। महागुना स्टॉप पर पार करने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी पहुंचती है। इस वर्ष छड़ी मुबारक 26 और 27 अगस्त की रात्रि को विश्राम के लिए पंचतरणी में रुकी थी और जैसा कि आप जानते हैं अंतिम पड़ाव जो होता है छड़ी मुबारक का, वो होता है पंचतरणी से श्यामाना जी की पवित्र गुफा, जो कि आज श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन होता है। और पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान करती है छड़ी मुबारक और आज सुबह तड़के ही पवित्र छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंची, वहां पर स्थापित की गई, वहां पर अभी पूजा अर्चना हो रही है। श्रोता, पंचतरणी में कल जो आरती हुई थी महंत जी और उनकी टीम के द्वारा रिकॉर्ड की गई, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचतरणी शिविर से कल हुई पवित्र आरती का विशेष प्रसारण। आमतौर पर आरती का प्रसारण शाम 5:30 बजे किया जाता है, लेकिन आज ये प्रसारण अपने मामूल से हटकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये विशेष आरती जो कल पंचतरणी में रिकॉर्ड की गई।

संभये हम निराकार ओंकार मूलांतुरियम गिरा ज्ञान गोदीतमीशम गिरीशम कालम महाकालम कृपा

हरि ओम शिव हर शंकर गौरीशां वंदे गंगाधर शिव रौद्र

0: सिस्टम
1: ओम शांति
0: शांति शांति अमरनाथ स्वामी की अमरनाथ स्वामी की अमरनाथ स्वामी की छड़े मुबारक के छड़े मुबारक के छड़े मुबारक के पंचतरणी क्षेत्र की पंच तत्वों की धर्म की महंत दीपेंद्र गिरी महाराज की महंत दीपेंद्र गिरी महाराज की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
1: बोलो अमरनाथ स्वामी की अमरनाथ स्वामी की अमरनाथ स्वामी की हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: हर हर
2: महादेव
1: ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।
3: श्रोताओ, आज के इस विशेष मौके पर महंत जी और टीम द्वारा रिकॉर्ड की गई पंचतरणी शिविर से कल हुई पवित्र आरती का विशेष प्रसारण आप सुन रहे थे। आमतौर पर आरती का प्रसारण शाम 5:30 बजे किया जाता है, लेकिन आज ये प्रसारण अपने मामूल से हटकर आप तक हमने अभी पहुंचाया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओ, देवों के देव महादेव को कैलाशपति और पर्वतों के स्वामी कहा जाता है। उनका वास ऊंची वादियों और बर्फीले पहाड़ों पर होने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। श्रोताओ, शिव जी वैराग्य का प्रतीक हैं। ऊंची वादियां दुनिया की भागदौड़, मोह माया और शोर से दूर एक शांत वातावरण देती हैं। ये शांति गहन ध्यान के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ऊंची पहाड़ियां और बर्फीले पर्वत पवित्र होते हैं। शिव जी को नीलकंठ और प्रकृति का मुख्य संरक्षक भी माना गया है। पहाड़ों की शुद्ध हवा, निर्मल जल और शांति महादेव का पवित्र स्वरूप से मेल खाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैलाश और हिमालय के ऊंचे शिखर पृथ्वी के सबसे प्रभावी एनर्जी सेंटर्स हैं। माना जाता है कि इन ऊंचाइयों पर ध्यान लगाने से कॉस्मिक एनर्जी से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। श्रोताओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी तो उनके फोर्स को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाशंकरी में धारण किया था। ये घटना हिमालय की ऊंची वादियों में ही हुई थी जहां से गंगा का उद्गम हुआ। श्रोताओं, पहाड़ों की कठिन चढ़ाई ये दर्शाती है कि महादेव तक पहुंचने के लिए फिजिकली और मेंटली श्रद्धा, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। ये स्थान किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं, बल्कि हर सच्चे भक्त

उसके लिए खुला है जो मेहनत करके वहां पहुंचता है। दोस्तों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, जब विश्वास पक्का हो तो भोलेनाथ हर राह आसान कर देते हैं। सब एक साथ कहते हैं, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

दिन रोएंगे फिर भूल जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, कुछ दिलेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज श्रवण पूर्णिमा का वो पावन दिन है जब आकाश से लेकर धरती लोक तक बस एक ही जयकारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। आज के ही दिन पावन छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश करती है और ये दिव्य यात्रा अपने पूर्ण समापन को पहुंचती है। श्रोताओं, छड़ी मुबारक की यात्रा नाग पंचमी के दिन शुरू होती है। दशमी अखाड़ा से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर पहुंचती है। वहां से अलग अलग पड़ाव होते हैं और आखिर में श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन यानी कि आज के दिन सुबह तड़के पवित्र छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंची, जहां पे पूजा अर्चना हुई और श्यामाना जी की यात्रा की जो शुरुआत है वो भी छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना से होती है। और श्यामाना जी यात्रा को अधूरा माना जाता है अगर छड़ी मुबारक की यात्रा या पूजा अर्चना पूरी ना हो। आज श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पवित्र गुफा पहुंचकर यात्रा का समापन होता है। जब छड़ी मुबारक वहां पहुंचती है, पूजा अर्चना होती है, महापूजन, महाआरती और विसर्जन के साथ ही ये माना जाता है कि सफल पूर्वक श्यामाना जी की यात्रा अपने समापन को पहुंची है। श्रोताओं, धार्मिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले उसमें से जो निकला था हलहल विष, यानी सृष्टि का सबसे वैशाल्य विष। उसकी आग इतनी प्रचंड थी कि सभी लोग जलने लगे। तब संसार को बचाने के लिए देवता और असुर दोनों महादेव की शरण में गए। हमारे भोलेनाथ ने बिना किसी स्वार्थ के पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस प्रलयकारी विष को अपने हाथ में लिया

और पी गए। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि वो विष शिव जी के पेट में ना जाए। विष के प्रभाव से महादेव का गला नीला पड़ गया और तभी से संसार के सबसे बड़े रक्षक को नाम मिला नीलकंठ महादेव। नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि दूसरों के दुख और विष को पीना ही सच्चा धर्म है। आज श्रवण पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर जब छड़ी मुबारक बाबा बर्फानी के चरणों में औपचारिक पूजा के साथ विश्राम लेगी, आइए हम भी अपने अंदर के बुराइयों का विष महादेव को समर्पित कर दें। तो बोलो सभी प्रेम से, जय शिव शंभू, जय नीलकंठ महादेव।

श्रोताओं, जब हम महादेव के बारे में सोचते हैं तो ध्यान में आती हैं उनकी अलग अलग छवियाँ, कभी शांत बैठी मुद्रा तो कभी तांडव करता हुआ रूप। क्योंकि शिव सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के हर भाव का आईना है। अब बात करते हैं महादेव के इन दिव्य रूपों की और उससे मिलने वाली जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं की। श्रोताओं, महादेव का सबसे पहला रूप है भोलेनाथ, सरलता का प्रतीक, जो ना तो छल जानते हैं न किसी में भेदभाव करते हैं। एक लोटा जल और सच्चा मन,

बस इतने में ही प्रसन्न। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, मन की सरलता कभी नहीं खोनी चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। इस विशेष प्रसारण में हम महादेव के अनेक रूपों के बारे में बात कर रहे हैं। श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं महादेव के उस रूप के बारे में जो न सिर्फ सनातन संस्कृति का गर्व है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नियम है, महादेव का नटराज स्वरूप। जब शिव नटराज बनते हैं तो वो सिर्फ एक नृत्य नहीं करते बल्कि पूरे ब्रह्मांड की हर एक सांस को चलाते हैं। इनका ये नृत्य दो रूपों में होता है। जब सृष्टि में शांति और आनंद का निर्माण करना हो तो महादेव करते हैं आनंद तांडव, और जब संसार में अधर्म, अहंकार और पाप का घड़ा भर जाता है तब होता है रुद्र तांडव। कभी ध्यान से देखा है श्रोताओं नटराज की मूर्ति को? उनके एक हाथ में डमरू है जो दर्शाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि और विचार से हुई है। उनके दूसरे हाथ में अग्नि की लपटें हैं जो बताती हैं कि विनाश तय है। और सबसे खास बात, उनका एक पांव एक छोटे से दैत्य पर टिका है। वो दैत्य और कोई नहीं बल्कि हमारा अज्ञान और अहंकार है। नटराज स्वरूप हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है दोस्तों, बदलाव ही शश्वत सत्य है। जैसे सृष्टि के निर्माण के लिए पुराने के समाप्त होना जरूरी है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की पुरानी आदत, क्रोध और अहंकार को मिटाना होगा ताकि नए विचारों का जन्म हो सके। जीवन के दुख और सुख, बनने और मिटने के इस चक्रव्यूह से डरो नहीं बल्कि महादेव की तरह हर स्थिति में आनंद के साथ अपना नृत्य करते रहो। तो दोस्तों, अपने अंदर के अहंकार को आज ही नटराज के चरणों में समर्पित कर दो। बोलो सभी प्रेम से हर हर महादेव।

के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उनके सबसे सुंदर, सबसे गहरे और सबसे अद्भुत स्वरूप के बारे में, महादेव का अर्धनरीश्वर रूप। कभी ध्यान से देखिए इस स्वरूप को। एक ही शरीर में दाईं ओर महादेव का तेजस्वी रूप और बाईं ओर माता पार्वती की कोमलता और करुणा। पुराणों में आता है, जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था, तब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपने शरीर से देवी शक्ति को अलग किया और अर्धनरीश्वर रूप में प्रकट हुए, ताकि सृष्टि का चक्र आगे बढ़ सके। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये स्वरूप हमें जीवन, समाज और रिश्तों की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। अर्धनरीश्वर हमें बताता है कि संतुलन ही ब्रह्मांड का नियम है। पुरुष और नारी, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पुरुष अगर विचार है तो नारी उसकी भावना है। पुरुष अगर शक्ति है तो नारी उस शक्ति की करुणा है। दोनों का मिलन ही पूर्णता है। आज के दौर में ये रूप हमें सिखाता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक पुरुष भी है और एक नारी भी। हम सभी के अंदर जहाँ कठोरता और साहस है, वहीं कोमलता और प्रेम भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये रूप नारी के आदर और उसकी बराबरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, अपने रिश्तों में आदर और समानता का ये भाव हमेशा बनाए रखिए। बोलो सभी प्रेम से, हर हर महादेव।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप अभी सुन रहे थे महादेव के अलग अलग रूपों पर निर्धारित ये बातचीत। श्रोताओं, 12 बजने वाले हैं, अब हम लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार जुड़ेंगे आपसे फिर से एक बार इस विशेष प्रसारण में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया।

0: गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. Under the scheme, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of accounts are owned by women. India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. According to Department of Atomic Energy, 9 additional reactors are under construction. Nuclear energy has emerged as an important component of India's development journey, contributing not only to electricity generation but also to healthcare, agriculture and various industrial applications. The Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat aims to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. India's nuclear energy program is built on the principle of safety first, guided by stringent regulatory oversight, multiple layers of protection and comprehensive emergency preparedness. It safeguards people and the environment while providing reliable low-carbon electricity. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remain missing on both sides of the border. Nepalese authorities reported 910 people

0: Gandak River's water flow on Wednesday night. The discharge has been declining since yesterday. As a precautionary measure, all 8 Gandak-affected districts have been kept on alert. Water Resources Department teams are maintaining round-the-clock surveillance and patrolling of the embankments. Finance Minister Nirmala Sitharaman will be on a 6-day visit to the United States beginning today. During her visit to US, she will travel to Chicago, Asheville, and New York. In Chicago, Finance Minister will participate in a roundtable conference with prominent investors and engage with leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector. Bilateral one-to-one meetings with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. The discussions will focus on India's investment opportunities, economic outlook, and areas for strengthening linkages with India's rapidly expanding startup and innovation ecosystem. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a 2-day visit to the Tashkent city. During his visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan to further strengthen the strategic partnership between the two countries. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra will officially culminate today with the traditional Chhadi Mubarak ceremony at the Hori Cave Shrine. It will proceed to the Hori Cave today, where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Budha Amarnath Yatra will also culminate today. Benchmark domestic equity indices were trading marginally up in the forenoon session today. The Sensex gained 141 points to 77,075, while the Nifty added 9 points to 24,099 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं. डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की आकाशवाणी आराधना चैनल पर. श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक. 3 जुलाई को इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा आरंभ हुई थी. 57 दिन तक चली ये श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा आज श्रवण पूर्णिमा को अपने समापन को पहुंच रही है. छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना से ही इस यात्रा की शुरुआत होती है और अपने समापन को भी ये यात्रा तब पहुंचती है जब छड़ी मुबारक पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से होते हुए पवित्र गुफा मंदिर पहुंचती है, वहां पर स्थापित की जाती है और पूजा अर्चना, महाआरती और महापूजन के आयोजन के बाद ही लेदर नदी के तट पर जब विसर्जन होता है श्री अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक का, तब जाके श्री अमरनाथ जी की यात्रा सफलपूर्वक संपन्न होती है. श्रोताओ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सावन का महीना महादेव को इतना प्रिय क्यों है और क्यों ये महत्वपूर्ण यात्रा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा इसी महीने में होती है? तो आइए आज खोलते हैं इस दिव्य रहस्य के पन्नों को. श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार सावन में ही देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था. जब सृष्टि को जलाने वाला हलहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए महादेव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया. विष के उस प्रचंड ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर जल अभिषेक किया था. इसीलिए सावन में शिवजी पर जल चढ़ाने और उनकी पूजा का सबसे बड़ा महत्व है. इतना ही नहीं दोस्तों, ये वही महीना है जब माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और जब भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तब पूरी सृष्टि की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं भोलेनाथ अपने हाथों में ले लेते हैं. और इन्हीं सब कारणों से अमरनाथ यात्रा का सावन से एक गहरा नाता है. इसी पावन महीने में पवित्र गुफा में बर्फ की बूंदों से प्राकृतिक पवित्र शिवलिंग अपना पूरा स्वरूप लेता है. ये वही गुफा है जहां महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और इस यात्रा का समापन भी

श्रवण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन यानी आज छड़ी मुबारक की प्रवेश और अंतिम पूजा के साथ होता है। श्रोताओं, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि महादेव की त्याग, करुणा और मिलन का उत्सव है।

श्रोताओं, अस्तित्व और आस्था के जिस दिव्य सफर की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई को, आज उस पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का 57वां दिन है। आज श्रवण पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर छड़ी मुबारक के गुफा में प्रवेश और अंतिम पूजा के साथ ये यात्रा अपने पूर्ण समापन को पहुंच रही है। आज का दिन सिर्फ एक यात्रा के पूरे होने का नहीं, बल्कि उन लाखों दिलों के विश्वास के विजय का दिन है। आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी यात्रियों और भक्तों का, जिन्होंने इस कठिन रास्ते पर चलकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इस यात्रा को सफल बनाया। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हमारे उन जवानों, प्रशासन, वॉलंटियर्स और लोकल सहायकों का, जिन्होंने दिन रात एक करके यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की। और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे प्यारे श्रोताओं आपका। आप सभी ने इस पूरे 57 दिनों में हमारे साथ जुड़कर इस यात्रा के हर एक पड़ाव को, छड़ी मुबारक के हर एक किस्से को इतने प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना और सराहा। यात्रा भले ही आज अपने समापन को पहुंच रही हो, पर महादेव की कृपा और उनकी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहेगी। श्रोताओं, आज सुबह के इस विशेष प्रसारण में मैं थी आपकी साथी उद्घोषिक आयरम कुरैशी। अब हमारी साथी जुड़ेंगी शाहीना, उनका साथ आपके साथ बना रहेगा शाम 6 बजे तक। इस वर्ष के विशेष प्रसारण से दीजिए अभी फिलहाल मुझे इजाजत। शाम 6 बजे तक आपके साथ बनी रहेंगे इस विशेष प्रसारण में शाहीना जी। जय भोले, जय महानाथ।

आदाब नमस्कार, मैं शाइना ऋषि आपकी उद्घोष का आपकी सेवा में हाजिर। जी हाँ, हमारा और आपका साथ रहेगा। शाम 6 बजे तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। अभी ही कुछ क्षणों में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहाँ से आप समाचार समाप्त करेंगे। बस समाचारों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताश

कंध का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: with the leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector. Bilateral one-to-one meetings with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. The discussion will focus on India's investment opportunities, economic outlook, and areas for strengthening linkages with India's rapidly expanding startup and innovation ecosystem. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a two-day visit to the Tashkent city. During his visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, to further strengthen the strategic partnership between the two countries. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra will officially culminate today with the traditional Chadi Mubarak ceremony at the Holy Cave Shrine. It will proceed to the Holy Cave today where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Budha Amarnath Yatra will also culminate today. The IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. And that is the end of this news bulletin.
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। जी हां श्रोताओं, आज इस वार्षिक यात्रा का जो है अंतिम दिन है और कुछ ही समय यानी कि 6 बजे तक ही हम आपके साथ हैं और आज का दिन जो है अंतिम इस साल के जो है यात्रा का है। तो आज हमारे लिए भी बहुत ही ये कि हम आपसे नए वर्ष तक जो है इसी यात्रा जो है विशेष प्रसारण तब तक हम आपसे अलग ही रहेंगे, इस ट्रांसमिशन को बहुत ही मिस करेंगे। तो यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा जो है सिर्फ एक धार्मिक सफ़र नहीं बल्कि ये कश्मीर के लोगों के अपनापन और मेज़बानी का भी एक जीता जागता उदाहरण है। सदियों से कश्मीरी लोग खासकर मुस्लिम समुदाय इस यात्रा के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग यात्रा के लिए न केवल सेवा प्रदान करते हैं बल्कि इससे कश्मीर की सांझी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम की संग। जहां श्रोताओं आपको बता दें, हर वर्ष सावन के महीने में हिमालय की बर्फीली गोद में बसा अमरनाथ गुफा मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का आस्था और उत्सव से स्वागत करता है। बालतल से 14 किलोमीटर और पहलगाम से 48 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में केवल पांवों की थकान ही नहीं बल्कि आत्मा की प्यास भी बुझती है, जो दर्शन के एक क्षण में ही साल भर का सुखद सुकून दे जाता है। जहां श्रोताओं 3888 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे बिना यहां की पथरीली चढ़ाई और कम ऑक्सीजन शरीर को कसौटी पर रखती है, वही अचानक बदलता मौसम और बर्फ के बीच अग्रिम तैयारी, मल्टी लेयर कपड़े, वाटरप्रूफ ग्लव्स और ट्रेकिंग पॉइंट्स जीवन रक्षक साबित होते हैं। ठहरा वाले पॉइंट्स पर साथी यात्रियों का स्वागत पोनी के साथ और स्थानीय वॉलंटियर्स की सेवाएं जो है कठिनाइयों को आसान बनाती है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, कुछ ही श्रेणियों में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार समाप्त करेंगे। बस जरा सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1,500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इतला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीन के सिचुआन सूबे में 5.1 की शिद्दत वाले जलजले के बाद नेपाल में सैलाब से मुतालिक ताज़ा वार्निंग जारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमेरिका का दौरा कर रही हैं, जो 6 रोज तक जारी रहेगा। और पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विलावन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लास फ्राकास से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना ने बेमिसाल मेयार और इनकलाब अंगेज नतायज दिए हैं, जिसके गुज़श्ता 12 साल में बेमिसाल असरात मुरतब हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तर बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें मजमुई तौर पर 3,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही या नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं, जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद, खुसूसन मुआशरे के महरूम और पसमांदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल JAM की तसलीस, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है, माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मौसर निज़ाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया, जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से वस्त एशिया के मुल्क उज्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वो ताशकंद जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम उज्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीद है कि वजीर आजम अपने दौरे के दौरान ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल का दौरा करेंगे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की याद में कांसी का

0: ये यादगारी मुजस्मा नस्ब किया गया है जो भारत के तीसरे वजीर आजम थे। ये मुजस्मा शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर वाक़ है और इसकी नकाब कुशाई 1976 में की गई थी। इस यादगारी मुजस्मे को मकामी उज़्बेक संगतराश याको शापिरोव ने डिज़ाइन किया था। इस मुकाम पर भारत के सयाह सिफारतकार और कारोबारी अफराद अक्सर व बेशतर आते हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। तवक्कुअ है कि वज़ीर आज़म मोदी भी ओरिएंटल स्टडीज़ की ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा करेंगे। ये सेंटर तारीख से मुतालिक तालीमी तहकीक और भारत के अदबियात बिलखसूस हिंदी और दीगर भारतीय जबानों के फ़रोग के लिए काम करता है। इस सेंटर में उज़्बेकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1545 अफराद अब भी लापता हैं। भूटे कोसी दरियाई निज़ाम के सरचश्मा के नज़दीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शगाह पड़ा तो शदीद सैलाब का रेला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदादी कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी अहलकारों ने मुतासरा ज़िलों से 800 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस दौरान आज चीन के जनूब मगरबी खित्ते के सिचुआन सूबे में 5.1 शिद्दत का जलजला आया, जिसके बाद नेपाल में सैलाब का ताज़ा अलर्ट जारी किया गया। हुकाम ने दरिया में पानी की सतह में इजाफे के खतरे के सबब त्रिशूली इलाके में लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होने की हिदायत दी है। नेपाल पुलिस ने तिब्बत की तरफ डैम में दोबारा तुगयानी के सबब रिहायशियों, सिक्योरिटी अहलकारों और राहत के कामों में मसरूफ कारकुनान से कहा है कि महफूज मकाम पर चले जाएंगे। भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूम हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पन बिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खजाना एस जयशंकर ने कहा है कि वजारत खारजा नेपाल के हुक्काम दिगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतल्लिका इदारों के साथ राबते में है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली एक, रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल में भयानक सैलाब के बाद अब बिहार में सैलाब का खतरा कम हो गया है। बुध की रात को गंडक दरिया के पानी के बहाव में इजाफे के बाद कल से पानी कम होना शुरू हो गया है। नायब वजीर आला और आबी वसायल के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल दरिया का बहाव मामूल पर है।
2: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
1: एहतियाती इकदाम के तौर पर गंडक दरिया से मुतासरा सभी 8 जिलों को अलर्ट रखा गया है। वजीरे खजाना निर्मला सीतारमन अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वजीरे खजाना सरकर्दा और मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओज, सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 की अमरीकी सदारत में G20 के उदराए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में भारतीय वक्त की सरबराही करेंगी। इस मीटिंग में जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, अहम आलमी इकतसादी और मालियाती उमूर पर तबादले ख्याल की गरज से G20 के मेंबर मुल्कों के उदराए खजाना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और सीनियर हुक्काम माशी अफसरान शिरकत करेंगे। भाइयों और बहनों के दरमियान खसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाय पेश करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। भारत के विलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते

0: हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और

0: औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश

0: मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के व्यूज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओं, पिछली सदियों में जब सड़क या सुविधाओं का अभाव था, कश्मीरी लोग ही यात्रा के मुख्य सहायक थे। वो यात्रियों के लिए खाना, आवास और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। 1898 में लिए गए एक फोटोग्राफ में कश्मीरी पोर्टर एक कश्मीरी पंडित महिला द्वारा दिया गया खाना खा रहे हैं, जो उस समय के भाईचारे को दर्शाता है और उस समय के सहयोग और समर्पण का प्रतीक है। आज के समय में भी कश्मीरी लोग यात्रा के लिए अपना दिल खोलकर स्वागत करते हैं। लोकल मुस्लिम गुजर बकरवाल समुदाय घोड़े, पोर्टर और पालकी सेवा प्रदान करते हैं, जो यात्रियों के लिए कठिन पहाड़ी रास्ते को आसान बनाता है। जी साइका, तो श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि साइका के पास भी कुछ है आपको बताने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए। तो साइका
2: जी, बिल्कुल, यहाँ पे श्रोताओं को हम बता दें कि जैसा कि आपने कहा कि जो पोर्टर्स थे, पालकी सेवाधार थे, जो बहुत ही ध्यान रखते हैं हमारे यात्रियों का, तो वहीं पे लंगर सेवा, जहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता है और अक्सर कश्मीरी समुदाय द्वारा आयोजित होती है, जो उनकी हिम्मत और भाईचारे का प्रमाण भी जो है। और हम ये आपको बता दें कि पहलगाम और गांदरबल के दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर्स और होटल वाले यात्रियों के लिए जो है पूरा सहयोग देते हैं। मस्जिदों से शांति और भाईचारे के संदेश दिए जाते हैं और वहीं लोकल लोग भी ज़रूरत पड़ने पर घायल यात्रियों की मदद भी करते हैं, जो कश्मीरियत की मिसाल है। ये परंपरा जिससे ऋषि सूफी और संस्कृति के रूप में जाना जाता है, कश्मीर की मेज़बानी को दर्शाता है।
1: बिल्कुल सही कहा साइका आपने। तो यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे, यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि अर्थ रूप से भी कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों यात्रियों के आने से टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी उद्योग को लाभ होता है। पहलगाम और सोनमर्ग के होटल जो हैं 100% बुक होते हैं। और छोटे व्यापारियों की अगर हम बात करें, छोटे व्यापारी, पोनी वाले और गाइड इससे जीविका कमाते हैं। ये यात्रा कश्मीर के अर्थ विकास में एक बड़ा योगदान देता है।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पुराणों के अनुसार अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा का इतिहास सदियों पुराना है। राजतरंगिणी और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस यात्रा का जिक्र मिलता है। एक कथा कहती है कि ऋषि बृजू ने इस गुफा की खोज की थी जब कश्मीर घाटी पानी के नीचे थी। दूसरी कथा के अनुसार 19वीं सदी में एक मुस्लिम गडियारे बूटा मलिक ने इस गुफा को दोबारा ढूंढा। आज भी बूटा सिंह जो है, जो घड़ियारा था, उनके परिवार को यात्रा के दान का एक हिस्सा दिया जाता है, जो कश्मीर के भाईचारे का प्रमाण है। जी
1: जी और यहाँ पे ये भी हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस

0: यानी 2026 में अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई और 28 अगस्त तक ये चलेगी, यानी कि आज तक श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस बार बेहतर सुविधाओं का प्रबंध किया है, जिसमें RFID कार्ड्स, मेडिकल कैंप्स और लंगर शामिल हैं। लेकिन इस सब के पीछे कश्मीरी लोगों का पूरा पूरा दान भी जो है वो अनमोल है। हम ये भी बता दें आपको कि पहलगाम और बालताल के रास्ते पर लोकल लोग यात्रियों का दिल खोल कर जो है स्वागत करते रहे। और ये भी
1: जी हाँ साथियों, आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के दिल का सफर है। ये वो किस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कश्मीरी लोग अपनी मेजबानी, समर्पण और प्यार से यात्रियों का स्वागत करते हैं। ये यात्रा बताते हैं कि धर्म और इंसानियत के बीच कोई दीवार नहीं। तो जब भी आप अमरनाथ जी यात्रा के बारे में सोचे, याद रखे ये यात्रा सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के भाईचारे और अपनापन की कहानी है।
0: जी आपने बहुत सही कहा। और यहाँ पर ये भी हम श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा ना केवल एक धार्मिक सफर है बल्कि कश्मीर के लोगों के भाईचारे, समर्पण और मेज़बानी का प्रतीक भी है। सदियों से कश्मीरी लोग इस यात्रा के ऐतिहासिक मेज़बान रहे हैं और आज भी वो अपने दिल से यात्रा का जो है स्वागत करते हैं। ये यात्रा कश्मीरियत की वो रोशनी है जो हिंदू मुस्लिम समुदायों को एक साथ जोड़ती है और इसकी सफलता में कश्मीरी लोगों का पूरा जो दान है वो अनमोल है। और अगली बार श्रोताओं आपको ये बताते हैं कि अगली बार जब आप अमरनाथ जी यात्रा के बारे में सुने या उसमें शामिल हों तो याद रखें ये यात्रा सिर्फ भगवान शिव जी के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के अपनेपन और भाईचारे की कहानी भी है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा रूहानी महत्व, अमरनाथ यात्रा का रूहानी महत्व जो है अपार है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाबा बर्फानी के रूप में स्वयंभू आइस शिवलिंग के दर्शन से मोक्ष

0: की प्राप्ति होती है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये वो स्थल है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा के साथ एक रोचक और जैसे कि अभी मैंने कहा पवित्र कथा जुड़ी है जो अमर कबूतर के नाम से जानी जाती है। ये कथा अमरनाथ गुफा में रहते दो कबूतरों के जोड़े से संबंधित है जिन्हें भक्त अमर या अमर तत्व प्राप्त मानते हैं। हिंदू पुराण और लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर गुफा में अमर कथा सुनाई थी तब ये कबूतर वहां मौजूद थे। उन्होंने ये गुप्त ज्ञान सुन लिया जिसकी वजह से वो अमर हो गए। आज भी भक्त ये मानते हैं कि गुफा में दिखने वाले कबूतर वही पवित्र जोड़ा है जो सदियों से वहाँ है। और यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे ये कबूतर गुफा के ठंडे और पवित्र वातावरण में रहते हैं जहाँ बर्फ का शिवलिंग हर साल जो है एक प्रतिक्रिया के रूप से बनता है। भगत मानते हैं कि इन कबूतरों का दिखना एक अद्भुत चमत्कार है क्योंकि इतनी ऊंचाई और कठिन जगह पर इनका जीवित रहना आम बात नहीं। ये गुफा जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं गुफा 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ का वातावरण कठिन होता है, फिर भी ये कबूतर वहाँ सदियों से देखे जा रहे हैं जो इनकी अमर कथा को और प्रभावल बनाता है।
1: जी शाहिन जी, आपने बहुत सही कहा। और यहाँ पर ये भी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कई यात्री अपनी यात्रा के अनुभव में बताते हैं कि जब वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो इन कबूतरों के दर्शन भी हो जाते हैं और उनका मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। ये कबूतर ना सिर्फ अमरनाथ जी यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। इन्हें देखना एक ऐसा अनुभव है जो यात्रियों के लिए अपनी यात्रा को और भी यादगार बना देता है।
0: जी कबूतरों की बात हो रही है तो दोस्तों को ये भी बता दें, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि अमरनाथ कबूतर की कथा अमरनाथ यात्रा के रूहानी सफर का एक अनोखा हिस्सा है। ये न सिर्फ एक प्राणिक कथा है बल्कि भक्तों के लिए एक जीवंत विश्वास भी है जो उन्हें भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से जोड़ता है। अगर आप इस यात्रा पर अगले साल आ रहे हैं तो इन पवित्र कबूतरों के दर्शन के लिए अपनी आँखें खुली रखें क्योंकि दर्शन आपके सफर को और भी पवित्र और यादगार बना सकता है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा का अंत एक ऐसा अनुभव है जो न सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है बल्कि उसके मन और आत्मा को भी एक नई रोशनी से भर देता है। यात्रा के दौरान हर कदम पर भक्तों की भावनाएं और उनकी श्रद्धा का एक अनुभव मिलन होता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के कठिन समय को, अपने दर्द और चिंताओं को पीछे छोड़कर अमरनाथ की ओर बढ़ता है, तो उसकी ये यात्रा सिर्फ एक फिजिकल सफर नहीं रहती बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। जी हाँ, रास्ते के हर मोड़ पर प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ यात्री को अपने असर में ले लेती है। बर्फ से घिरे हुए पहाड़, शीतल हवाओं और निराकार आकाश के बीच महान यात्रा ये अपने आप में एक धार्मिक रहस्य है। जब यात्री गुफा तक पहुंचता है तो बर्फानी शिवलिंग का दर्शन करना उसके लिए एक ऐसी भक्ति की अनुभूति होती है जो जिंदगी के हर दर्द और कठिनाई से ऊपर होती है। वहां एक व्यक्ति अपने सभी दुखों और अपने सपनों को भगवान के साथ बांटने का समय पाता है। यात्रा के अंत में जब लोग वापस लौटते हैं तो उन्होंने एक पुराना जीवन जो है छोड़ा होता है और एक नई सोच, नई उम्मीद और एक बेहतरीन आत्मा को अपनाया होता है। यात्रा का सफर जो है सिर्फ एक जगह तक नहीं बल्कि अपने अंदर की रोशनी तक होता है जो कभी भी छुप कर नहीं रहता।

श्रोताओं, बात कर रहे हैं आज अंतिम दिन की, तो आपको ये भी बता दें कि आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग। तो आखिरी दिन का सफर अमरनाथ यात्रा में सबसे खास और भावुक भावुक भरा होता है। जब यात्री अपने अंत के दिन गुफा की ओर बढ़ते हैं तो उनका हर कदम जो है एक आध्यात्मिक अपनापन और विश्वास से भरा होता है। रास्ते की थकान और कठिनाइयाँ सब कुछ पीछे छोड़ चुकी होती है। दिल में एक अलग ही शांति और एक प्रकार का देवी

अनुभव होता है जो केवल एक वक्त ही समझता है। वही वो समय होता है जब हर व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के दर्शन का समर्थन करने के लिए तैयार होता है। जैसे ये गुफा के अंदर शिवलिंग दिखाई देता है, एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता पूरी रूह में भर जाती है। काफी यात्रियों के लिए ये पल जो है एक सपने जैसा होता है, जब उनका जीवन चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हो जाता है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हमने आज कहा, सुबह से हम कह रहे हैं कि आज जो है अंतिम दिन है वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 2026 का। तो ये एक ऐसा दिन होता है जब व्यक्ति अपने दुख, चिंता और परेशानियों को भगवान के पास छोड़कर उनके साथ एक नई रोशनी में जीने का संकल्प करता है। आखिरी दिन जब सब कुछ जो है सफल हो जाता है और व्यक्ति को अपने मन की गहराइयों में एक नई सोच और एक नई ऊर्जा मिलती है, जो उससे अपने जीवन को नए ढंग से जीने की प्रेरणा देती है। जहाँ श्रोताओं, यात्रा के इस अंत में एक व्यक्ति अपने अंदर की पुरानी बेचैनियों और गिले शिकवों को त्याग कर एक साफ और पवित्र आत्मा के रूप में गुफा से वापस लौटता है, और उसका ये सफ़र हमेशा के लिए उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेवज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो जैसे कि हम सुबह

0: से कह रहे हैं आज यात्रा का अंतिम दिन है और ये जो 58 दिन की यात्रा चल रही है, सबका योगदान इसमें बराबर है, सब ने अपने कार्य बहुत ही अच्छे से निभाया। और यहाँ पे यही कहेंगे कि अभी वक्त है उन उनकी आवाज़ों से रूबरू होने का जो इस पूरी यात्रा के दौरान ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद रहें। हमारे वो रिपोर्टर्स जो लगातार 58 दिनों तक यात्रा के हर पड़ाव पर, हर गतिविधि और हर अहम लम्हे से हमें सूचित करते रहें, जिन्होंने मौसम की चुनौतियों के बीच यात्रा पथ से लेकर पवित्र गुफा तक हर पल की तस्वीर अपनी आवाज़ के जरिए आप तक पहुंचाई। जी हाँ श्रोताओं, आइए अब एक एक करके इन पांचों रिपोर्टर्स से सुनते हैं इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा का उनका अनुभव। जानते हैं ग्राउंड जीरो पर रहकर इतने लंबे सफर को कवर करना उनके लिए कैसा रहा, उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और इस पूरी यात्रा को लेकर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले चलते हैं जम्मू की ओर, जहां से जावेद मेहराब को सुनते हैं और सुनते हैं उनका अनुभव।
1: आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का भव्य समापन छड़ी मुबारक की पूजा के साथ आस्था, प्यार, मोहब्बत, सेवा और अनुशासन के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोगों की तीर्थ यात्रा के प्रति स्नेह की एक ऐसी मिसाल और रिवायत है जो सदियों से यहाँ की पहचान बनकर हर वर्ष देखने को मिलती आ रही है, और यहाँ के गौरव और महादेव के प्रति विश्वास को न सिर्फ बढ़ाती है बल्कि हमेशा से जिंदा रखती आई है। सदियों से चले आ रहे पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में यहाँ के आपसी सद्भाव की न सिर्फ मिसाल है बल्कि यहाँ की संस्कृति, कल्चर, यहाँ के कारोबार, आर्ट और क्राफ्ट को देश भर में दिखाने का मौका भी ये पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा प्रदान करती है। जम्मू के पहले बेस कैंप भगवती नगर से एक भव्य समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज से 2 महीने पहले पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी, और उसके बाद शुरू हुई तीर्थ यात्रा जैसे शुरू हुई हजारों तीर्थ यात्रियों ने पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ के द्वार पर हाजिरी देकर पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। देखते ही देखते पहले ही सप्ताह में पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थ यात्रियों की संख्या लाखों में पहुंच गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी और एक बहुत बड़ी शुरुआत भी थी। यहाँ की सरकार, प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, स्वयंसेवी संस्थाएं, आम लोगों के सपोर्ट से हासिल की गई ये कामयाबी वाकई एक अपने आप में एक मिसाल थी। जम्मू में पहले बेस कैंप भगवती नगर के अलावा इस बार प्रशासन ने यहाँ तवी रिवर फ्रंट के खूबसूरत किनारे पर तीर्थयात्रियों के लिए प्रबंधन किया था, और हर बार यहाँ की प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड मिलकर स्वयंसेवी संस्थाओं और यहाँ के लोगों के सपोर्ट के साथ तीर्थयात्रियों के लिए आराम, प्रबंधन, सुविधाओं के मद्देनज़र कुछ नई कोशिशें कर तीर्थयात्रा के लिए नए इंतज़ाम करने में जुट जाती है। तवी रिवर फ्रंट उसी की एक अनोखी मिसाल थी, जहाँ तीर्थयात्रियों के लिए तमाम प्रबंधन और सुख सुविधाओं को एक ही जगह रखकर तीर्थयात्रियों के लिए इस कठिन सफ़र को आरामदेह बनाया गया था। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू दर्शन, यहाँ के धार्मिक स्थलों का दर्शन पर्यटन विभाग ने भी किया, जिसके तहत राही बस सर्विस शुरू भी की गई, जिसमें लाखों तीर्थयात्री ने जम्मू के विभिन्न पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। रेलवे स्टेशन जम्मू से लेकर तवी रिवर फ्रंट और पहले बेस कैंप भगवती नगर में तमाम प्रबंधन, सुविधाएं, इंतजाम और तीर्थयात्रियों को तमाम तरह की गाइडलाइंस भी एक ही जगह पर दी गई। हर जगह हेल्प डेस्क बनाए गए ताकि तीर्थयात्री आराम से अपना सफ़र पूरा कर सके और सफ़र के दौरान तमाम तरह के इंतज़ाम के साथ अपने सफ़र की तरफ गांव।

0: टेलीविज़न हो, तमाम तरह के माध्यम से जिसमें बड़े बड़े बैनर, रेडियो, मेगाफोन के ज़रिए तीर्थयात्रियों की गाइडलाइंस की गई ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह का यात्रा के प्रति मतभेद न हो। याद रहे कि ये तीर्थ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए हर वर्ष तमाम तरह के प्रबंधन को अंजाम देती है, जिसमें जिसे देश भर में एक मिसाल के तौर पर माना जाता है, जिसमें खाने पीने, रहने, आराम, ट्रांसपोर्ट, चिकित्सा और सभी तरह के प्रबंधन एक साथ मिलकर कराए जाते हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम को सख्ती से लागू किया जाता है और तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा कवच भी किसी भी तरह की भूल चूक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हज़ारों सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और स्थानीय लोग तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने में एक कलीदी रोल अदा करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी देकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुरक्षित बनाते हैं। रोज़ाना यहां बेस कैंप भगवती नगर से हज़ारों तीर्थयात्री रवाना होते और तीर्थयात्रा के दोनों मार्गों की ओर रवाना होकर बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन करने के लिए निकलते। इस बरस लाखों तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की उस मेहमान नवाजी की याद दिलाई जो यहाँ की सदियों से पहचान रही है। और इस बार जहाँ तीर्थयात्रियों के लिए प्रबंधन में 20 से ज़्यादा ट्रांजिट कैंप्स, बाजार एसोसिएशंस की तरफ से लगाए गए लंगर, चिकित्सा के प्रबंधन में लगे डॉक्टर, योगा और भजन पूजा में स्थानीय कलाकारों का खास परफॉर्मेंस, तीर्थयात्रियों को लुभाने और महादेव की भक्ति में अपना खास रोल निभाने और तीर्थयात्रियों को मंत्र मुक्त करते भी देखा गया। वहीं तीर्थयात्री यहाँ जम्मू में जहाँ प्राचीन मंदिरों में, धर्मस्थलों में पूजा करते और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप करते देखे गए, वहीं यहाँ के कल्चर और संस्कृति को उन्हें समझने का मौका भी मिला। इसी तरह से ये यात्रा लगातार उसी जोश जज्बे और हर्षोल्लास के साथ जारी रही और लाखों तीर्थयात्री इस यात्रा का हिस्सा बनकर एक बार फिर सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनने में कामयाब रहे। और इस उम्मीद के साथ अगले बरस भी एक नई शुरुआत के साथ पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा नए प्रबंधन, नए इंतजाम और ख़ास तौर पर उसी मेहमान नवाजी की मिसाल बनकर उभरेगी।
1: जी श्रोताओं, सुन रहे हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का आज का अंतिम प्रसारण। और अब सुनते हैं हमारे एक वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो कि बानिहाल से उनकी बात और उनका अनुभव यात्रा को लेकर, जो बाकी संवाददाताओं की तरह लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने रहे।
2: यात्रा 2026 अमन अमान और खुश असलोबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच गई है और सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक इस साल 5 लाख से जायद यात्रियों ने हिमालयी पहाड़ों में मौजूद श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन किए हैं। शाहरा पर चढ़ने वाले मामूल के ट्रैफिक की तरह श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अहमियत का हामिल रही और चंद रोज को छोड़कर शाहरा यात्रा के दिनों मजमुई तौर पर ट्रैफिक की मामूल की नकलो हरकत के लिए मेहरबान रही। 2 जुलाई को श्री अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला जम्मू से रवाना होकर वारदे कश्मीर हुआ था। 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाका रामबन के चंद्रकूट यात्रा निवास और बानहाल के लांबर ग्राउंड में श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से खातिर का इंतजाम किए गए थे और जिला इंतजामिया ने महकमा सेहत, महकमा जल शक्ति, महकमा बिजली, म्यूनसिपल कौंसिल और दीगर महकमों के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को तैनात किया गया था जो 24 घंटे श्री अमरनाथ यात्रा की खिदमत के लिए पेश थे। मुल्क भर के मुख्तलिफ मजहबी और रजाकार जमातों ने शाहरा पर वाका चंद्रकूट कस्बा में 10 लंगर, यात्रा निवास चंद्रकूट में 2 लंगर और बानहाल के लांबर ग्राउंड में 22 लंगरों का अहतमाम किया था, जहां दोनों तरफ से यात्रियों के लिए खाने पीने, नाश्ते और सोने के अलावा दीगर इंतजाम रखे गए थे। इस साल की यात्रा में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होने की वजह से कई बार दुश्वारियां भी पेश आई, तहम इससे यात्रा सिर्फ 6 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई, क्योंकि पसियों और पत्थरों के गिरने की सूरत में शाहरा को काबिले आमदरफ्त बनाए रखने के लिए जिला इंतजामिया रामबन, ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस यात्रा के दौरान खसूसी इंतजाम कर रखे थे और मशीनरी को हर वक्त तैयार बतैयार रखा गया था। पूरी यात्रा के दौरान शाहरा पर यात्रा का ट्रैफिक मजमुई तौर पर पूरा अमन और खुशगवार रहा और यात्रा में शामिल गाड़ियों के चंद एक छोटे हादसा को छोड़कर श्री अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ती रही और इन हादसा में कोई

0: नुकसान नहीं हुआ था। शहरी अमरनाथ यात्रा के लिए चंद्रकूट और बानहाल में कायम तिब्बी मराकजों में हजारों यात्रियों का इलाज किया गया और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। साल 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सबसे ज्यादा 9837 यात्री 8 जुलाई को कश्मीर के लिए रवाना हुए थे, जबकि सबसे कम तादाद 926 यात्री 7 अगस्त को रवाना किए गए थे। नाशरी टनल और बानहाल के दरमियान श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की बाहरी नफरी तैनात थी और फौज को ऊपर पहाड़ियों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की निगरानी सौंपी गई थी, जबकि यात्रियों की हिफाजत नकलो हरकत के लिए फोर्सेस को ड्रोन, बम डिस्पोजल स्क्वाड और खोजी कुत्तों की मदद भी हासिल थी। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 में जहां यात्रियों की तरफ से सरकारी इंतजाम के रोल की सराहना दिल खोल कर की गई और इंतजाम को लेकर यात्रियों की तरफ से जिला रामबन में एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। इस सिलसिले में बात करने पर डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान ने एफएम बालतल को बताया कि इस साल की यात्रा हर लिहाज से बेहतरीन रही और इंतजामिया की तरफ से जिला रामबन में यात्रियों के लिए तमाम तरह की खिदमात और सहूलियात पेश रखी गई थी। उन्होंने कहा कि जिला रामबन में 35 लंगर कायम थे और किसी भी वक्त बिजली, पीने के पानी या तिब्बी सहूलियात के हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए रामबन के उन तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरों का शुक्रिया अदा किया है जो जिला रामबन में श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का हिस्सा थे। इस दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन कमाल जी जाड़ू ने बताया कि महकमा सेहत की तरफ से जिला रामबन में यात्रियों के लिए खसूसी तिब्बी मराकज कायम किए गए थे और यात्रा निवास चंद्रपुर और बानहाल के लाम्बर ग्राउंड में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम करते थे ताकि यात्रा को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जिला रामबन में तकरीबन 34,000 मर्दों खवातीन यात्रियों का इलाज और मुआलजा किया गया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, और अभी आप सुनेंगे हमारे संवाददाता एस तारिक का अनुभव जो लगातार हमें और आपको अपडेट करते रहे अनंतनाग से।
2: इस विशेष प्रसारण की सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी पवन यात्रा आज श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर आस्था और अकीदत के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। इस सिलसिले में आज सुबह बोफटे महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पवन यात्रा के अंतिम पड़ाव बाबा अमरनाथ गुफा पहुंच गई है। इस पवन जथे में साधु संतों के अलावा सिक्योरिटी एहलकार, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और प्रशासन के ऑफिसर भी शामिल थे। गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्र उच्चारण किया गया। इस मौके पर सारे विश्व में अमन भाईचारे और देश की सुरक्षा और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। इसके साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का रिवायती समापन हो गया। छड़ी मुबारक आज ही वापस पंचतरणी पहुंचेगी, जहां विश्राम के बाद कल सुबह पहलगाम के लिए रवाना होंगे। पहलगाम में एक रात विश्राम करने के बाद अगले दिन महा छड़ी का गौरी शंकर मंदिर के नजदीक लदर नदी में निसर्जन किया जाएगा, जिसके बाद पवन काफिला श्रीनगर के लिए रवाना होगा। श्रोताओं, मैं दर्शन और प्रसिद्ध भूमि से आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा की धार्मिक और तारीखी परंपरा से वाकिफ कराने की कोशिश करूंगा। छड़ी मुबारक और श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध है। यही वजह है कि श्री अमरनाथ यात्रा की परंपरा का आगाज और समापन छड़ी मुबारक के साथ होता है। जेठ अष्टमी पूर्णिमा से श्रवण पूर्णिमा तक का ये उर्सा मजहबी एतबार से इंतहाई अहम माना जाता है। पुराने धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक साधु ने अपने शिष्यों और भक्तों को श्री अमरनाथ गुफा की जानिब जाने और वहां भगवान शिव के पवन शिवलिंग के दर्शन करने की हिदायत दी, जिसके शिशिन यात्रा पर रवाना तो हुए और मार्ग में राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस ब्रंगीशा के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बयान की। ब्रंगीशा ने भगवान शिव से प्रार्थना की। मान्यता है कि भगवान शिव ने इन्हें एक पवित्र कब्र अता किया जिसमें वैद में शिव और शक्ति के प्रतीक के तौर पर छड़ी मुबारक का नाम दिया गया है। ये छड़ी शिव और शक्ति के पवन निशानी मानी जाती है। तब से ही भक्तों का एक बड़ा जत्था इस पवन छड़ी के साथ श्री अमरनाथ गुफा के जानिब यात्रा करता रहा है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों के बीच वाका बाबा श्री अमरनाथ गुफा भारत के अहम शक्तिपीठ स्थानों में से एक मानी जाती है और विश्व भर में एक अहम तीर्थ आस्था के तौर पर जानी जाती है। ग्लेशियरों से ढके पहाड़ों के बीच वाका ये एक विशाल गुफा है। गुफा के अंदर कुदरती तौर पर बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भक्तों के लिए गहरे आस्था का मरकज है। मान्यता है कि गुफा के छत से टपकने वाले पानी के कतरों के जमने से ये बर्फानी शिवलिंग वजूद में आता है जिसे भगवान शिव का आदि विधिक रूप माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान शिव देवी पार्वती को अमृतवाह का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ गुफा के ओर रवाना हुए तो उन्होंने रास्ते में अपने साथ जुड़े कई चीजों और प्रतीकियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। माना जाता है कि नदी यानी को उन्होंने ननवन पहलगाम में छोड़ा। इसके बाद चंदनवारी में अपने माथे पे धारण किए हुए चंद्रमा को त्याग दिया। आगे शिशनाथ पहुंचकर अपने गले में धारण किए नाग को छोड़ दिया। पंचतत्व में उन्होंने जीवन के पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का त्याग किया। इस तरह अपने पुत्र गणेश को महापर्वत के नजदीक छोड़कर वो आगे बढ़े। इसलिए पहलगाम चंद्रवाड़ी शिशनाथ महागुणताप और पंचतरणी आज अमरनाथ यात्रा के प्रमुख और पवन पड़ावों में से माने जाते हैं। श्रोताओं अगर हम अमरनाथ शब्द के अर्थ पर गौर करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। अमर यानी अमृतु, नाथ यानी भगवान स्वामी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतवाह का रहस्य इसी पवन गुफा में सुनाया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव चाहते थे कि अमृतवाह का ये रहस्य किसी तीसरे जीव तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह का चुनाव किया जहां उनके और देवी पार्वती के अलावा किसी और के पहुंचने की कोई संभावना ना हो। कहा जाता है कि गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने अपने साथ जुड़े सभी चीजों का त्याग कर दिया था। आखिरकार जब वो गुफा तक पहुंचे तो उन्होंने देवी पार्वती को अमृतवा का रहस्य सुनाया। इस कथा से जुड़े एक और दिलचस्प बात कबूतरों की जोड़े से मुतलिक है। कहा जाता है कि गुफा के अंदर दो कबूतरों के अंडे किसी तरह महफूज रह गए थे। बाद में इन अंडों से कबूतर का एक जोड़ा निकला जिसने भगवान शिव और देवी पार्वती के दरमियान होने वाली इस गुप्त बात को सुन लिया। हिंदू आस्था के अनुसार ये कबूतर भी अमर हो गए। श्रोताओं आज भी कई श्रद्धालु ये दावा करते हैं कि उन्होंने पवन अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों के इस जोड़े को देखा है और इसे बागिया और शुभता की निशानी मानते हैं। इस आस्था और विश्वास के साथ इस वर्ष भी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 में तकरीबन 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और आज अपने अंतिम दर्शन के साथ ये पवन यात्रा इख्तिताम को पहुंची। श्रोताओं इस शुभकामना के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मेरी प्रार्थना है कि बाबा बर्फानी के सभी श्रोताओं को की मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा मंगलमय और सुखद रहे। पहलगाम से
3: जी श्रोताओं अब सुनते हैं गांदरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान के विचार और अनुभव इस पवित्र यात्रा 2026 से जुड़े। और ये यहाँ पर कहना भी गलत नहीं होगा कि इस पवित्र यात्रा के प्रसारण का एक खास हिस्सा बने रहे रहीम रिजवान।
4: श्रोताओं, सबसे पहले रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के इस पावन अवसर पर

0: पालना श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा का समापन हुआ। 3 जुलाई से शुरू हुई तीर्थ यात्रा के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन का लाभ उठाया। गांधरबल जिले के बालतल मुखी मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करते रहे और पूरी यात्रा मार्ग पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। इस वर्ष यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन गांधरबल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य विभाग, स्वयं सेवकों तथा स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम और ट्रैक के रखरखाव के कारण यात्रा को अगस्त में स्थायी रूप से स्थगित भी कर दिया गया था। पवित्र या छड़ी मुबारक की पारंपरिक रस्में आयोजित की गई। इसके साथ ही इस वर्ष की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सफल समापन के साथ ही जम्मू कश्मीर में आस्था, सेवा और भाईचारे की एक और पवित्र यात्रा ने अपनी यादें छोड़ दी। प्रशासन ने स्थानीय समुदाय तथा स्वयं सेवकों के योगदान को भी यात्रा की व्यवस्थाओं को अहम हिस्सा बताया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सफल समापन स्थानीय लोगों के योगदान ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की मिसाल पेश की। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आज श्रद्धा, आस्था और उत्साह के माहौल में समापन हो गया। इस वर्ष जो जुलाई से शुरू हुई तीर्थ यात्रा में देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में घाटी आगमन हुए। बाबा बर्फानी के भक्तों ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, पवित्र दर्शन से प्राप्त होकर देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना की। बालतल मार्ग इस पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। बालतल और आसपास के क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई। स्थानीय युवाओं और स्वयं सेवकों ने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद करने, भीड़ को व्यवस्थित रखने, स्वच्छता बनाए रखने तथा जरूरतमंद यात्रियों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में सक्रिय योगदान दिया। वहीं स्थानीय दुकानदारों, घोड़ा पिट्ठू सेवा प्रदाताओं, टैक्सी चालकों और अन्य सेवा प्रदाताओं ने भी यात्रियों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई। कई स्थानीय लोगों ने लंगर और सेवा गतिविधियों के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा की, जिससे यात्रा के दौरान अतिथि देव भावा की भावना और मजबूत हुई। श्रद्धालुओं ने भी स्थानीय लोगों के व्यवहार और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर की खूबसूरती, वादियों के साथ साथ यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी उनकी यात्रा को और यादगार बनाया। प्रशासन की ओर से भी यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। यात्रा के सफल समापन के साथ ही बालतल और आसपास के क्षेत्रों में चहल पहल कम होने लगी है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं के प्रति दिखाई गई सेवा और अपनापन एक बार फिर कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आया है। श्रोताओं, आकाशवाणी ने बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी बालतल में खसूसी ट्रांसमिशन कायम किया ताकि हम अपने श्रोताओं को यात्रा के बारे में पल पल की सूचना से साझा करते रहे, जिसके लिए हमारी टीम ने अंत तक मेहनत की एवं तीर्थ यात्रा के दौरान आपके साथ रहे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इस दौरान हमने जो योगदान दिया वो यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी यह तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके और अगले साल आप फिर से ऐसे ही भारी मात्रा में आए और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद ग्रहण करें।
1: जय श्रोताओ, जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के संग और अभी आप समाप्त कर रहे हैं हमारे संवाददाता जो है रिपोर्टर्स उनका जो अनुभव है, विचार है, वो आप समाप्त कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि इनकी अहम भूमिका है इस विशेष प्रसारण के लिए। इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस प्रसारण के लिए। और एक और हमारे जो जिन्होंने बहुत ही अपडेट्स

0: वो क्या कि बहुत मेहनत से ये सभी लोग बहुत मेहनत से हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे लिए आपके लिए अपडेट्स बनाते रहे। और हम अभी सुनेंगे इमरान नायकू जी को जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से हमारे साथ अभी तक जुड़ते रहे और अभी सुनेंगे हम सब मिलकर उनका अनुभव और उनका विचार जो इस यात्रा को लेकर होगा।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोज़ा इस यात्रा में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लाखों अकीदतमंदों ने पहलगाम और बालतल के रास्तों से मुकद्दस अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचकर दर्शन किए। यात्रा का रिवायती इख्तिताम महादीपेंद्र गिरी जी की क्यादत में मुकद्दस छड़ी मुबारक की अमरनाथ गुफा तक आमद के साथ हुआ। मेरे लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 सिर्फ एक न्यूज़ असाइनमेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा रहा जिसे मैं तवील अरसे तक याद रखूंगा। इस साल एक बार फिर मुझे श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से यात्रा की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। पांथा चौक में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरी से आने वाले यात्रियों से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू इस कवरेज का एक खास हिस्सा रही। मुख्तलिफ जबानें बोलने, मुख्तलिफ कल्चर और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग एक ही अकीदत के साथ कश्मीर पहुंचे थे। इनसे बातचीत के दौरान इनके सफ़र के तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस, इनकी सकाफत, कल्चर, इनकी सोच और कश्मीर के बारे में इनके ख्यालात जानने का मौका मिला। हर यात्री की अपनी एक कहानी थी। कोई पहली मर्तबा कश्मीर आया था तो कोई कई मर्तबा अमरनाथ जी यात्रा कर चुका था। उनसे गुफ्तगू ने मुझे ये समझने का मौका दिया कि इस रूहानी सफ़र को मुख्तलिफ लोग किस तरह महसूस करते हैं और उनके लिए इस यात्रा की क्या अहमियत है। एक रिपोर्टर के लिए ऐसी मुलाकातें सिर्फ खबर या न्यूज़ हासिल करने तक महदूद नहीं होती, बाज़ औक़ात चंद मिनट की गुफ्तगू भी लोगों को करीब से समझने का मौका फराहम करती है। इस यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ होने वाली बातचीत ने मेरे लिए इस पूरे असाइनमेंट को मज़ीद ख़ास बना दिया। इस कवरेज के दौरान आकाशवाणी FM बालतल टीम के साथ काम करना भी मेरे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा रहा है, जैसे कि गुज़िश्ता कई सालों से। टीम के हर फर्द ने भरपूर तआवुन किया, ख़ास तौर पर ट्रांसमिशन से वाबस्ता हेड्स और तमाम एंकर्स के साथ काम करना मेरे लिए खुशगवार और सीखने वाला तजुर्बा रहा। मैं पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यात्रा की कवरेज के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कायम ट्रांजिट कैंपों से काम करने वाले दीगर रिपोर्टर्स के साथ भी राबता रहा और तआवुन भी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट्स के साथ राबते और बेहतर कोऑर्डिनेशन ने यात्रा की मजमूई सूरत हाल को समझने और इसे बेहतर अंदाज में रिपोर्ट करने में मदद दी। इस पूरी यात्रा को कामयाबी से मुनक्किद करने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों का अहम किरदार रहा। यात्रियों की हिफाजत, आमद रफ्त, उनके कयाम और दीगर ज़रूरी सहूलियात के लिए बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट्स या इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ लोकल्स यानी मकामी लोगों का तआवुन भी काबिले जिक्र रहा। यात्रा के रास्तों और मुख्तलिफ इलाकों में मकामी लोगों ने यात्रियों के साथ तआवुन किया और इनकी मदद की। एक रिपोर्टर की हैसियत से इस तआवुन और हम आहंगी को करीब से देखना भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से मुसलसल दूसरी या तीसरी मरतबा श्री अमरनाथ जी यात्रा की रिपोर्टिंग करना एक इंतहाई यादगार तजुर्बा रहा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनके कल्चर को समझना और कश्मीर के बारे में उनके तजुर्बात जानना इस असाइनमेंट की सबसे खूबसूरत बात रही। यात्रा आज इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन इस दौरान मिलने वाले लोगों की बातें, उनके तजुर्बात और मुख्तलिफ टीमों के साथ काम करने की यादें मेरे साथ रहेंगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक मजहबी यात्रा की रिपोर्टिंग नहीं थी, बल्कि लोगों, अकीदत, मुख्तलिफ सकाफतों या कल्चर्स और इंसानी रिश्तों को करीब से समझने का एक खूबसूरत मौका था। इस तजुर्बे को या इस एक्सपीरियंस को यादगार बनाने वाले हर यात्री, हर साथी, हर टीम और हर उस शख्स का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने इस कवरेज के दौरान तआवुन किया।

आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत आभार जो आप समय समय पर हमें अपडेट करते रहे और इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे यहाँ पर मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार साहब का, जो समय समय पर हमें अपडेट प्रदान करते रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 28 अगस्त है और रक्षाबंधन का दिन है। हमारे इस प्रसारण की आखिरी मजलिस जारी है। सरकारी निर्णय के अनुसार आज शाम 6 बजे हम इस प्रसारण से आपसे अनुमति लेंगे और यूं इस वर्ष के लिए ये विशेष प्रसारण मुकम्मल होगा। और हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम सभी इस प्रसारण का हिस्सा बने और आपकी सेवा में उपस्थित रहे और अभी भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम सभी जो यहाँ पे आपकी सेवा में उपस्थित रहे, उन्होंने काम भी किया और आपकी सेवा पहले दिन से ही कर रहे हैं। और सबका लेना नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे साथी एक का नाम ज़रूर लेंगे। हम आमिर अशरफ का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही इस प्रसारण से जुड़े रहे और उनका बहुत ही योगदान है इस प्रसारण में। वो यहाँ पे भी काम करते रहे, आपकी सेवा करते रहे और यहाँ के जो बात है ऑफलाइन में भी आपके लिए अपडेट्स देते रहे और इस प्रसारण का एक हिस्सा बनते रहे। उन्होंने समय समय पर इस प्रसारण के लिए काम किया और इस प्रसारण के लिए अपडेट्स दिए, हमारा साथ दिया, हमारे लिए अपडेट्स दिए।

0: और जो हमने आप तक पहुंचाए। आइए उनका भी अनुभव सुनते हैं यहाँ पर कि उनका क्या विचार है, क्या उनका अनुभव है इस विशेष यात्रा को लेकर। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज 28 अगस्त 2026 श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा का पारंपरिक और आधिकारिक

हुजूम दिखा। 4 दिन में ही 85,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी का बर्फ का पवित्र हेम शिवलिंग इस बार शुरुआत के 5 दिनों में ही पिघल गया था, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। मौसम ने यात्रा को कई बार रोक दिया। जुलाई के बीच में लगातार वर्षा, भूस्खलन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण यात्रा लगभग 6 दिन तक रुकी रही। फिर 9 अगस्त से दोनों रास्ते ट्रैक की मरम्मत के लिए बंद कर दिए गए। बीआरओ ने कमजोर हिस्सों की मरम्मत शुरू की और इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने अगले दिनों के लिए खराब मौसम की चेतावनी भी दी। इसके बाद आम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गई और बेस कैंप पर मौजूद लोगों को वापस भेज दिया गया। इस तरह यात्रा व्यवहारिक रूप से लगभग 37 दिन ही चली। इसके बावजूद 4,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। देश के कोने कोने से और कुछ विदेशी यात्री भी आए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरी तरह टाइट रहे। कॉन्वॉय, एरियल सर्वेलेंस और ट्रैक पर जवानों की निगरानी के साथ यात्रा संभाली गई। आम यात्रा बंद होने के बाद भी सदियों पुरानी परंपरा जारी रही। 22 अगस्त को श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से छड़ी मुबारक भगवान शिव की पवित्र छड़ी महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में रवाना हो गई। बिजबिहाड़ा, मटन के मारतंड मंदिर, पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी से होती हुई आज सुबह श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा पहुंची। वहां वैदिक मंत्र उच्चारण और पारंपरिक पूजा के साथ छड़ी मुबारक की स्थापना हुई। ये इस यात्रा का असली धार्मिक समापन माना जाता है। महंत दीपेंद्र गिरी जी ने शांति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। प्रशासन ने छड़ी मुबारक के साथ चल रहे साधुओं और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, पानी, स्वच्छता और रिहाइश का भी इंतजाम किया। 29 अगस्त को वापसी शुरू होगी और 30 अगस्त को पहलगाम में लिदर नदी के किनारे विसर्जन और भंडारा के साथ पूरी यात्रा समाप्त होगी। इस वर्ष मौसम ने कई परीक्षाएं दी। रास्ते टूटे, यात्रा बीच में रुकी, लेकिन आस्था नहीं रुकी। कश्मीर की ये पवित्र यात्रा एक बार फिर ये दिखाती है कि विश्वास और व्यवस्था दोनों मिलकर इस यात्रा को संभालते हैं। और इस पूरी सफर में आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी बालतल की भी एक अपनी भूमिका रही। यात्रा के पहले दिन से लेकर आज इसके पारंपरिक समापन तक हमारी कोशिश रही कि पहाड़ों के बीच चल रही इस यात्रा की हर अहम तस्वीर आप तक रेडियो की आवाज़ के जरिए पहुंचती रहे। बालतल और यात्रा के दूसरे महत्वपूर्ण पड़ावों से हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर रहकर आपको लगातार अपडेट किया। श्रद्धालुओं की आस्था हो, मौसम की चुनौतियां हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सेवा में जुटे लोग हों या छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा, हमारी कोशिश रही कि आप तक हर जरूरी जानकारी समय पर पहुंचाई जा सके। रेडियो की एक खासियत है, ये तस्वीर नहीं दिखाता लेकिन आवाज के जरिए तस्वीर बना देता है। और हमारी कोशिश भी यही रही कि जब आप अपने घर में रेडियो सुन रहे हों तो आपको महसूस हो कि आप भी बालतल के उस रास्ते पर हैं जहां हर तरफ बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के कदम कठिन चढ़ाई को पार कर रहे हैं और जहां सेवा और आस्था एक साथ नजर आती है। हमारे रिपोर्टर्स ने 58 दिनों तक लगातार ग्राउंड जीरो से अपने अनुभव और यात्रा की हर अहम गतिविधि से आपको अवगत कराया। ये सिर्फ एक रेडियो कवरेज नहीं थी, यह आपको इस पवित्र सफर का हिस्सा बनाने की हमारी एक ईमानदार कोशिश थी। और आज जब श्रावण पूर्णिमा के इस पवित्र दिन बाबा बर्फानी जी की यात्रा अपने पारंपरिक समापन तक पहुंच रही है, तो संयोग देखिए, देश रक्षाबंधन भी मना रहा है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली ताकत विश्वास में होती है। एक धागा कलाई पर बंधता है और एक रिश्ता दिल से दिल को जोड़ता है। अमरनाथ यात्रा भी तो कुछ ऐसी ही है, आस्था का एक ऐसा बंधन जो श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी से जोड़ता है और कश्मीर की जमीन को देश के कोने कोने से आए लोगों के साथ जोड़ता है। मौसम ने रोका, रास्ते बंद हुए, मुश्किलें आई, लेकिन आस्था अपने रास्ते पर चलती रही और शायद इसी का नाम यात्रा है, मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा विश्वास के साथ सफर को पूरा करना। तो आज जब इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा अपने समापन की ओर है, आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी बालतल की पूरी टीम की तरफ से
सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों, सुरक्षा कर्मियों, प्रशासन, स्थानीय लोगों और इस यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने वाला हर व्यक्ति का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपने हमारी आवाज़ सुनी, हम पर भरोसा किया और हमें मौका दिया कि हम इस पवित्र यात्रा की कहानी आप तक पहुंचा सकें। यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन आस्था का सफर कभी समाप्त नहीं होता। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर हर रिश्ता मजबूत हो, हर घर में खुशियां हो और हमारे समाज में शांति, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। इसी दुआ और इसी विश्वास के साथ आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी बालतल से इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा की विशेष रेडियो कवरेज को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई आवाज के साथ। आकाशवाणी बालतल के लिए मैं आमिर अशरफ।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, एक पवित्र यात्रा का व्यापक वातावरण है। चलिए हम ले चलेंगे आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जो 3 जुलाई 2026 प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 यानी आज अपने शुभ समापन पहुंचेगी। जब सुबह के सुख में प्रभात के समय अमरनाथ गुफा में महंत दीपेंद्र गिरी जी और अन्य साधु संतों के द्वारा विशेष पूजा का आयोजन किया गया, इस यात्रा के समापन पर यात्रा में शामिल लाखों भक्तों के अंतकरण में इस पवित्र गुफा के दर्शन और भगवान शिव के आशीर्वाद की स्मृतियां रहेगी, जो जीवन भर उनके साथ रहेंगे।
1: जी श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा का इतिहास और इसकी प्रामाणिकता हमेशा से ही यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। हिंदू धर्म में इस पवित्र गुफा का अपार महत्व है, जो कश्मीर के हिमालय पर्वत श्रृंखला माला के ऊंचाई पर स्थित

0: यहाँ पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया था, जो यात्रा में भाग लेने वाले हर यात्री के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। इस गुफा की खोज से जुड़ी कहानी भी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि ये गुफा पहले भृगु ऋषि के द्वारा खोजी गई थी, लेकिन इसकी पुनर्खोज एक गडरिया ने 1850 के दौरान की थी। इस गुफा में स्थित शिवलिंग, जो प्रत्यक्ष रूप से बर्फ से बनता है और पिघलता है, भगवान शिवजी के आशीर्वाद का प्रतीक है। ये यात्रा, श्रोताओं आपको बता दें कि ये यात्रा जो है आत्म परिशोधन का साधन भी है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को पवित्र और शुद्ध करता है, अपने मन को भगवान शिवजी के चरणों में अर्पित करता है और इस गुफा में स्थित शिवलिंग, जो बर्फ से स्वयं निर्माण होता है और समय के साथ पिघल भी जाता है, भगवान शिवजी के दिव्य रूप का प्रतीक माना जाता है। हर साल हजारों लाखों भक्तों की श्रद्धा इस गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए खींच लाती है। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये अपनी आत्मिक यात्रा का भी प्रतिरूप करती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन और आत्मा को पवित्र और शुद्ध करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करता है।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। ये यात्रा, जो अपने आप में एक संकरण और कठिन पर्वतमाला से गुजरने वाली यात्रा थी, अपार संवेदन सुरक्षा और समुदायों के साथ आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा के सुखद और सुरक्षित समापन के लिए आवश्यक सभी तैयारियां की थी। इस यात्रा के दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF की अत्याधिक जो है कंपनियों को मार्ग पर तैनात किया गया। BSF के नौजवानों ने हर मोड़ पर, हर रास्ते पर यात्रियों की सुरक्षा की, ताकि उनका सफर निश्चिंत और सुरक्षित रहे। इसके अलावा CRPF और SSB की कंपनी पूरी तैयारी के साथ तैनात की गई थी, जो समय समय पर यात्रा के मार्ग पर अपना कार्य कर रही थी।
0: और श्रोताओं, ये सुरक्षित व्यवस्थाएं सिर्फ सीनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि यात्रियों के व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। हर यात्री को RFID कार्ड प्रदान किया गया था, जिससे प्रशासन उनकी स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता था। ये व्यवस्थाएं पिछले कई वर्षों से सफल रही हैं और इस वर्ष भी RFID के माध्यम से प्रशासन ने हर यात्री पर अपनी दृष्टि रखी, ताकि किसी भी असामान्य घटना को समय रहते संभाला जाए। इस वर्ष सरकार ने CCTV मॉनिटरिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से यात्रा की पूरी व्यवस्था जो है, यानी देखभाल की, और श्रीनगर के HMT स्थित कमांडेंट सेंटर से पूरी यात्रा को लाइव मॉनिटर किया गया, जिसमें हर एक यात्री की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। ये कमांडेंट सेंटर किसी भी असामान्य स्थिति में जो है तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम रहा।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य किसी भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और श्री अमरनाथ जी यात्रा में हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया जाता है। DRDO के द्वारा दो विशेष अस्पताल स्थापित किए गए थे, एक पहलगाम बेस कैंप में और दूसरा बालतल बेस कैंप में। ये अस्पताल हर तरह की चिकित्सा सुविधाओं से योग्य थे, जिसमें दिल के रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का तुरंत उपचार संभव था।
0: श्रोताओं, इस यात्रा के दौरान पूरे देश और घाटी के प्रशिक्षित डॉक्टर्स को यहाँ तैनात किया गया, जिन्होंने यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ये डॉक्टर हर तरह के इमरजेंसी केसेस को संभालने में सक्षम रहे और ये आवश्यक था, क्योंकि

0: अमरनाथ जी की यात्रा अपनी ऊंचाई और कठिन पर्वतमाला के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी और कठिन मौसम यात्रियों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही यात्रियों के लिए 24/7 मुफ्त लंगर सुविधा भी उपलब्ध रहे, जिसमें सभी को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया। ये लंगर सामाजिक संगठनों और सरकार के सहयोग से चलाए गए, जो दिन रात यात्रियों की सेवा में लगे रहे। ये लंगर इस यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा बन चुके हैं, जहां यात्री अपनी थकान मिटाकर शक्ति प्राप्त करते हैं।
1: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा के दौरान सरकार और निजी स्थानियों ने मिलकर स्वच्छता को और पर्यावरण संरक्षण को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। जीरो वेस्ट यात्रा और ग्रीन यात्रा का नारा दिया गया। यात्रियों को पहले से ही इस बारे में जागरूक किया गया, ताकि ये यात्रा जो है पर्यावरण हित में अपनी श्रेष्ठता प्रमुखता प्रदर्शित करें। यह नारा केवल एक प्रचार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके लिए व्यवहारिक कदम उठाए गए। सभी यात्रियों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी गई और साथ ही उन्हें अपना कचरा जो है सही जगह पर डालने के लिए जागरूक किया गया।
0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा एक आत्म पर प्रशोधन है, उसका साधन है। इस यात्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर के मानसिक और आत्मिक बोझ को दूर कर सकता है, अपने जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा को पा सकता है। इस यात्रा का मार्ग कठिन आवश्यक है, परंतु यह कठिनता ही इस यात्रा को विशेष बनाती है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो संकल्प और श्रद्धा चाहिए, वही इस यात्रा का हर कदम में दिखाई पड़ता है। इस साल इस पवित्र यात्रा में भाग लेने के लिए आने वाले भक्तों की संख्या 5 लाख के करीब रही। ये संख्या न केवल इस यात्रा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि बाबा के भक्तों के बीच बढ़ती हुई श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है।
1: जहाँ इस वर्ष की यात्रा में प्रशासन ने अपनी संपूर्ण शक्ति और योग्य स्थानों का प्रयोग करके यात्रा को सफल और सुखद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा के दौरान हर एक सुविधा का विशेष ध्यान रखा, जिससे यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
0: और साथ ही साथ तरह तरह के सेवाएं जो है यात्रियों के लिए रखी गई, ताकि पवित्र गुफा तक का सफ़र आसान हो सके। पालकी वालाज, पिट्ठू वालाज, पोनी वालाज, जो सभी स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए और क्या कुछ नहीं किया, ताकि ये यात्रा जो है, ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, और उनका हर प्रयास जो है सराहनीय रहा। और हर तरह, जो हम ये कहेंगे कि ये हर तरह के व्यवस्थाएं रखी गई जो और सुविधाएं रखी गई, और इन यात्रियों को ये सुविधाएं जो है प्रदान की गई।
1: जी हाँ, NDRF और SDRF की टीमें किसी भी असंभव घटना के लिए तैयार थी, क्योंकि हिमालय के इस क्षेत्र में कभी भी कुछ हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने यात्रियों के लिए भोजन, स्टॉल, टेंट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध किया था। स्थानीय लोगों ने हमेशा की तरह इस बार भी हर एक यात्री का दिल से स्वागत किया।
0: और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आशा है कि ये यात्रा आने वाले वर्षों में भी इसी तरह अनुयायी रहे, और देश और विदेश से अधिक संख्या में यात्री इस पवित्र अमरनाथ जी गुफा में दर्शन करने आए और भगवान शिव जी के आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें।

0: श्रोताओ जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग। हम इस पवित्र यात्रा को विदा करते हैं तो हमें गर्व हो रहा है कि हमने इसके लिए सुचारू और सुरक्षित व्यवस्था की है। यहाँ तक हम यात्रियों के लिए सशक्त और सुरक्षित यात्रा होने के लिए ध्यान से तैयारी की गई। मार्ग योजना से लेकर सुसज्जित चिकित्सा और सुविधाओं तक हर संभव प्रयास किया गया था। समर्पित धनवीरों ने उनकी टीम और सुरक्षा कर्मियों ने प्रत्येक यात्री की सुविधा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वर्ष भी विशेषतः मैं एक महत्वपूर्ण तत्व जो है पर्यावरण के प्रति रक्षण किए गए उपायों पर था। हमने अपने प्रसारण के द्वारा अपाशिचित प्रबंधन की योजनाओं को आप तक पहुंचाया और यात्रियों को पर्यावरणीय सुरक्षित के महत्व के बारे में जागरूक किया।
1: और श्रोताओं, इसके अलावा उच्च गुणवत्ता का भोजन और आवास सुविधाएं सुनिश्चित की गई थी जो श्रद्धालुओं को जो है शांत मन से यात्रा पर निकलने की सुविधा प्रदान करती रही। ये जानते हुए कि उनकी आवश्यकताओं और कल्याण को देखा जा रहा है, सुरक्षा के मामले में प्रत्येक की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी मोहर लगा दी गई थी। सख्त सुरक्षा जांच, सतर्कता प्रणाली और मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र को अमरनाथ यात्रा के दौरान एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था।
0: जी हाँ, हम प्रशासन स्थानीय समुदायों और सभी हितधारकों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने इन उपायों को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने में अपना अस्थायी और निरंतर सहयोग और मदद प्रदान की। जैसे

अमरनाथ यात्रा समाप्त होते हैं, हम आशा करते हैं कि ये प्रयास आपकी आत्मा पर अक्षय चिन्ह छोड़ गया हो, आपकी मनोवृत्ति को नवीनकरण किया है और आपकी श्रद्धा को मजबूती प्रदान की है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाता रहे।

0: आज बनेगी पापा की स्पेशल डिश। मम्मी की पूरी रेसिपी मेमोराइज की है।
1: क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा?
2: लगता है पापा।

0: श्रोताओं समाप्त कर रहे हैं आप ये अंतिम विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा का। आपको बता दें कि वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। हमारे इस विशेष प्रसारण का केवल एक ही लक्ष्य था और उद्देश्य यही कि हम लगातार 58 दिनों तक आपके साथ रहे, यात्रियों को सूचित रखें, यात्रियों और प्रशासन के दरमियान एक ब्रिज का काम करते रहें। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं डीजी आकाशवाणी का, उनके पश्चात हमारे डीडीजी आकाशवाणी श्रीनगर श्री गुरबिंदर सिंह जी का, जिनकी अगुवाई में हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम लगातार इस विशेष प्रसारण को बिना रुके अनथक काम करते रहे, उनका बहुत बहुत आभार इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बनने के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री गुलाम रसूल आखुन साहब का, जो हमारे आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन के हेड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, और उनके साथ हम आभार व्यक्त करते हैं प्रोग्राम ऑफिसर श्री वसीम फारूक वानी साहब का, जो इस विशेष प्रसारण के कोऑर्डिनेटर थे। हम आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती सेमीना शाह मैम का, जो इस विशेष प्रसारण की निगरानी कर रही थी।
1: और श्रोताओं, आपको यहाँ पर यात्रा के दौरान हमारे ये बता दें कि हमारा ट्रांसमिशन जो है 3 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। रोज़ाना 11 घंटे का हमारा ट्रांसमिशन था, लेकिन अगर अच्छे श्रोता नहीं मिलते तो शायद हम इतने उत्साह के साथ ये काम नहीं कर पाते। हम अपने श्रोताओं के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत ही आभार अभिनंदन करते हैं। कई लोग जो है हमें लगातार लिखते थे, अपनी राय अपने सजेशंस हम तक पहुंचाते थे। अगर हमें हम ये कहेंगे कि कई कुछ हम ये कहेंगे कि सबका नाम जो है हम

0: हमारे लिए लेना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही अजीज का नाम लेना चाहेंगे, जिन्हें हम माँ कहकर पुकारते हैं, ममता के रूप में हम उन्हें देखते हैं, वो हैं कर्नाटक मैसूर से डॉक्टर रेखा निरंजन जी।
1: जी हाँ सायका ने जहाँ माँ कहा, वो माँ है जो अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हमेशा हमारी सहायता करती रही, हर एक चीज़ हमें सिखाती रही। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आपको बता दें कि ये अपनी आस्था का सबूत दिखाकर कश्मीर घाटी वारिद हुए और बाबा बर्फानी की दिव्य कृपा से अमरनाथ मंदिर में हाजिरी दी और बाबा भोले के दर्शन प्राप्त किए। आइए सुनते हैं उनका अनुभव क्या रहा यात्रा के दौरान और सुनते हैं उनके विचार।
2: नमस्कार। आज 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की बधाइयों के साथ आकाशवाणी श्रीनगर के रेडियो बालतल के सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण इस वर्ष जुलाई 3 तारीख को वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुआ और आमिर अशरफ ने उस प्रसारण का शुभारंभ किया। इस वर्ष 57 दिनों की यात्रा के लिए विशेष प्रसारण प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक रेडियो बालतल ने सुचारू रूप से प्रतिदिन सुंदर प्रस्तुति से सफलता अर्जित की है। आषाढ़ और श्रावण के पवित्र काल में गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक विश्व भर के रेडियो श्रोता जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण को सुनते हैं, वे जानते हैं कि इस अवधि में वेद पाठ, वेद मंत्रोच्चार, सूक्त, रुद्र पाठ, पंचाक्षरी मंत्र कितना महत्व रखते हैं। ओंकार आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जो सभी स्तोत्र हैं भक्ति का सुंदर वातावरण बना देते हैं। दिन भर रेडियो में शिव भक्ति संगीत और मनोहारी संगीत से मन प्रसन्न रहता है। इसके लिए हम रेडियो बालतल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण के राष्ट्रीय व प्रादेशिक समाचारों के निर्धारित समय अवधि की मर्यादा का ध्यान लेते हुए पूरे प्रसारण में उद्घोषक अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। हमारे 5 संवाददाताओं का वर्णन अवश्य करना होगा। भगवती नगर जम्मू से जावेद मेहराब, बानीहाल से राष्ट्रीय राजमार्ग का ब्यौरा देने वाले मोहम्मद तस्कीन, अनंतनाग से एस तारिक, पांथा चौक श्रीनगर से इमरान नायकू और बालतल से रहीम रिजवान, ये सभी संवाददाता अपनी रिपोर्टिंग प्रतिभा से हम श्रोताओं का दिल जीत लेते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इस साल बहुत बड़ी खुशखबरी ये रही कि जुलाई 3 तारीख को ही राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर निर्मित 810 मीटर रामसु वायाडक्ट और 3.5 किलोमीटर 8003 सुरंग का उद्घाटन हुआ। यातायात की आवाजाही को सुरक्षित बनाया गया। उन्हीं रास्तों पे जहां भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता था, इसे हम कश्मीर घाटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे। इस वर्ष प्रसारण की विशेषता इस बात में थी कि उद्घोषकों में महिला उद्घोषकों की संख्या अधिक रही। कुछ नए उद्घोषकों से भी परिचय प्राप्त हुआ। पिछले सालों से कार्यरत उद्घोषकों की चिर परिचित आवाज और उनके मीठे स्वरों ने विशेष आत्मीयता का अनुभव कराया। कुल मिलाकर आकाशवाणी श्रीनगर के इन सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि आपका समर्पण और प्रस्तुतिकरण शानदार रहा। वैसे इस साल यात्रा की अवधि पर सबसे अधिक प्रभाव भारी वर्षा, रास्तों में भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ का अंदेशा और निचले स्थानों में पानी का भर जाना रहा। इससे रास्तों की मरम्मत की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। समूचे विश्व में जनवरी 2026 से ही भारी वर्षा और तबाही की खबरें हमें मिलती रही हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोजम्बिक, जिम्बाब्वे में जनवरी में कई जाने गईं और मार्च और अगस्त में केन्या में वर्षा ने बहुत तबाही मचाई। इसी तरह

मन में भी वर्षा और अचानक बाढ़ से कई सारे परिवार त्रस्त हुए। इसी तरह हमारे यहाँ कश्मीर में भी बारिश की वजह से यात्रा को अब तब स्थगित करना पड़ा और 9 अगस्त तक ये यात्रा पूरी तरह स्थगित हो गई। श्रावण पूर्णिमा के दिन आज जब हम सब श्री अमरनाथ जी यात्रा के समापन पर्व की बात कर रहे हैं, तो दिल को दहलाने वाले तिब्बत नेपाल भूकंप से जनित 26 अगस्त 1926 की बात अवश्य कहनी होगी। 300 भारतीयों में लगभग 50 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी सम्मिलित हैं, जो अभी लापता हैं। इस अप्रत्याशित त्रासदी में फंसे विश्व भर के पर्यटकों और नेपाल वासियों पर हमारे भारतीय यात्रियों के प्रति हार्दिक अनुकंपा और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी प्रार्थना हम व्यक्त करते हैं। 57 दिनों की श्री अमरनाथ जी यात्रा सुरक्षित सुचारू रूप से संपन्न हुई। इस यात्रा के लिए हमारे जाबाज वीरों, सैन्य बल, पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सीमा सड़क संगठन और उनकी इंजीनियरिंग शाखा बीकॉन और केंद्रीय बल, अग्निशामक दल और अन्य सुरक्षा वीरों ने और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने खासकर तथा सेवादारों ने जिस समर्पण से इसमें सेवा की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इन सभी हमारे भारतीय जाबाजों का धन्यवाद करूंगी। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में केंद्रीय और जम्मू कश्मीर प्रशासन के स्वास्थ्य विभागों ने स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, विशेषतः सांसों की तकलीफ का समाधान, उपचार एवं गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में तत्काल उपचार सेवा को पूरी तरह से सक्षम रूप से निभाया। जगह जगह स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में 15,000 से अधिक यात्रियों ने सेवा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त हाईटेक चिकित्सा शिविर बनाए गए थे और 24/7 यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था थी। इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या यात्रियों के लिए बड़ा प्रश्न नहीं बनी और यात्रा सुचारू रूप से चली। इसका श्रेय हम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स तथा अन्य सेवादारों को हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम सभी कर्मचारियों को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद कहते हैं। आत्मीय श्रोताओं, करोड़ों वर्षों से बनी लाइमस्टोन और जिप्सम की इन चट्टानों को मैंने पढ़ने की कोशिश की। परत दर परत उन पर बने विन्यासों में मैंने अपने शिव बाबा को ढूंढा। आप सबसे मैं दावे से कहती हूँ कि हम सब भारतीयों को देश के इस गौरव मुकुट अमरनाथ पर्वत, गौरव पर्वत को इतने निकट से देखना अपने आप में एक अद्भुत रोमांचक अनुभव है। इनकी शिखरों से बहती ग्लेशियर की धाराएं झरझर करते प्रपात एवं नीचे दुर्गम कंदराओं में बहती कलकल नदियां, जो अंततः पंचतरणी में आकर अमरनाथ गुफा के चरणों में समा जाती हैं। आपको श्री अमरनाथ यात्रा का यह सुखद रोमांच विश्व भर में कहीं नहीं मिलेगा। सनातन धर्म के श्रद्धालुओं से एक परम रहस्य को साझा करना चाहती हूँ। वो यह कि संख्य वर्षों से इन पर्वत के शीर्षों पर बादलों ने, तीव्र वायु के झोंकों ने, धूप ने, वर्षा ने, ग्लेशियरों की आर्द्रता ने वो परम आश्चर्य से ओतप्रोत करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रस्तर आकृतियों को गुप्त रूप में, गुहिया रूप में रच डाला है। मैंने अपनी आंखों से सामने देखते हुए पालकी में बैठे बैठे अमरनाथ पर्वत के शिखरों पर शिव परिवार को देखा। जहां महादेव सामने बैठे हैं, उनको अपलक देखता नंदी भी बैठा है। शिव के पीछे माँ पार्वती और उनकी बगल में गणेश जी और ठीक पीछे कार्तिकेय। गुफा

0: तू दाईं दिशा में विशाल नंद को रक्षक मुद्रा में तैनात देखा, जो मुस्कुराता अंतरिक्ष को देख रहा है। और गुफा के पास श्री राम सीता की जोड़ी देखी, हाथ जोड़े हनुमान जी देखे, और गुफा जैसी एक कंदरा में शिव बाबा जटाधारी को भी देखने का अवसर मिला। पहाड़ पर नरसिम्ह की मुखाकृति मिली और एक किनारे पर गणेश जी का सूंड और गणेश जी दिखाई दे। पांचों पांडवों को देखा और पर्वत के शिखरों पर यहाँ तहाँ धारीदार शेष नाग की आकृतियां देखी और शेषनाग का फन भी देखा गुफा के भीतर। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म मात्र पुस्तकों में या प्रवचनों में नहीं है। अगर सनातन धर्म को आप सचमुच देखना चाहते हैं तो आप अमरनाथ के ऊंचे पर्वतों पर अवश्य में देख सकते हैं और आपको जो ये अलौकिक अनुभव होगा, यह अध्यात्म के पथ पर एक नवीनतम खोज है, ऐसा मैं मानकर चली हूँ। धन्यवाद आप सबको, रक्षाबंधन की पुनश्च बधाई, और श्रावण पाठ पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों और विदेश में बसे हमारे प्रवासी भारतीयों और समस्त विश्व के लोगों को अपना प्रेम और सुख शांति की प्रार्थना के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, यहाँ पे हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस यात्रा के आयोजन में द ट्रू ट्रस्ट का योगदान महत्वपूर्ण है। महंत दीपेंद्र गिरी जी द्वारा 2004 में स्थापित ये संस्था हर साल इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देती है। इस बार भी द ट्रू ट्रस्ट ने देश भर से आने वाले साधुओं और श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। ये सेवा न केवल यात्रा आसान बनाती है बल्कि इससे श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्धि अनुभव भी बनता है।
2: और श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भक्त इस सेवा का लाभ उठाते हैं और अपनी यात्रा को बिना किसी चिंता के पूरा कर पाते हैं। महंत दीपेंद्र गिरी जी 3 दशक से अधिक समय से छड़ी मुबारक से जुड़े हुए हैं और ये पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में रहती है और छड़ी स्थापना तथा छड़ी पूजन के पुराने विधियों के बाद जो है निकाली जाती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये संस्था जो है ये देवगिरी दशनामी अखाड़ा ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करता है।
1: जी हाँ, ये ट्रस्ट 1957 में स्वर्गीय महादेव गिर ने स्थापित किया था। खुद महंत दीपेंद्र गिरी जी मीडिया से बात करते समय अक्सर इस ट्रस्ट के कार्य के उल्लेख करते हैं। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के कुछ क्षण बाकी है। आपसे विदा लेने से पहले आप तक पहुंचाते हैं वर्ष 2026 के लिए पंचतरणी से छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी का ये संदेश।
3: संदेश मैं यह देना चाहूंगा कि जिस तरह से हम सभी अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है और हम सब मिलकर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करके इस जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत को सुंदर, सुव्यवस्थित, संपन्न और समृद्धि ऐसी वो तरक्की करे, इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए।

0: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम भी आप सभी श्रोताओं से विदा लें। इन 58 दिनों की इस विशेष प्रसारण के दौरान हमने कोशिश की श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, हर परंपरा और यात्रा के हर पहलू को आप तक पहुंचाने की। लेकिन इंसान से भूल चूक होना स्वाभाविक है। बात करने में, जानकारी देने में या हमारे इस प्रसारण के दौरान अगर कोई कमी या हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम दिल से आशा करते हैं कि आपने हमें अपना समझकर माफ किया होगा।
1: श्रोताओं, आज 28 अगस्त को वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के समापन का पवित्र अवसर है। साथ ही आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है, जो प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती डोर का त्योहार है। कल छड़ी मुबारक के विसर्जन के साथ इस वर्ष की जो यात्रा है अपनी अंतिम विधि की ओर बढ़ेगी। पवित्र छड़ी मुबारक को दरियाए लिदर में विसर्जित किया जाएगा और इसके साथ यात्रा की एक और आध्यात्मिक यात्रा अपने समापन को प्राप्त करेगी।
0: जी हां श्रोताओं, इसी के साथ ही आकाशवाणी श्रीनगर के इस विशेष प्रसारण से हम आपसे विदा लेते हैं। आपने 58 दिनों में हमें सुना, अपना समय दिया और हमारे इस प्रसारण का हिस्सा बने, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। इजाजत दीजिए, अगले वर्ष फिर इसी पवित्र यात्रा के अवसर पर इसी प्रसारण के जरिए हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। शुभ यात्रा। जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अकवारी भर के दुलरावें पुचकारे, मामा के अकवारी भर के दुलरावें पुचकारे, मायावी का महिमा गावें मायापति।

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मन।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूं। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूं। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे।

0: जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
1: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
2: निषाद राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदु बानी, कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
0: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि बामन के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहू, सिय रघ पीर चरण रथ होहू।
0: आप यथार्थ कहते हैं। अरे, बातों ही बातों में सगया हो गया।
4: तात, कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होए।
1: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
3: खेकेई से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
5: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है।
1: सुमंत जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
4: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, यह भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
1: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
6: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
4: किंतु राजकुमारी जी,
6: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हो सुखद न लागा, अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा।
4: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा?
6: सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय करब परिपाए, मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे।
2: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
1: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
7: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
1: क्या कह रहे हो तुम?
7: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु एही।
1: कहां चरण और कहां चली?
7: जी हाँ।

0: जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारहू लखनु पै जब लगिन पाए पखारी हो तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो।
1: सीते लक्ष्मण देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
2: केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
0: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
1: अरे हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
3: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
1: केवट पार की उतराई ले लो।
0: नाथ आज मैं कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में कीनी मजूरी आज दीन विधि बन भल भूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
3: नहीं केवट तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
4: अरे तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो, कैसे केवट हो तुम?
0: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
1: तथास्तु।
2: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
5: अरे आओ आओ उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
6: भद्र कैसी शीतल छाया है, हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे, खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
5: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
1: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
6: यह लीजिए आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
1: सीते लक्ष्मण जल ग्रहण करो।
3: धन्यवाद,
5: चलिए हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
1: नहीं नहीं आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
3: चलो आओ आओ चलते चलते चलो चलो चलो चलो चलो बूढ़े सखी कैसे माँ बाप हैं इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया। विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला। आह कितने सुंदर हैं ये,
7: वाह
3: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहू मृग मृग देख ही दिया से।
7: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछे।
3: चलो राजकुमारी विनय हम करही तिया सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
7: स्वामी

0: क्षम भी हमारी, बेलगुन मानव जानी गवारी।
1: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आहे तुम्हारे।
2: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे।

0: ही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत जा ही चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे तापस बेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धर नर राज तनु चले दलन खल निशचर अनी।
1: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
2: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह जगपेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानि निहारा, सोई जानै जहि देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहां वास करूं।
2: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हों

0: स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल, हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल, गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कहीं बसहु सीय सहित दो भ्रात।
1: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: सुमंत, इधर तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। सखा राम उसी लखु जय तामो ही पहुंचाओ, ना ही तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव।
1: महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। महाराज श्री राम ने गुरु वशिष्ठ भरत पूर्वासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो।
0: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
1: सीता जी कुछ कहना चाहती थी, उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई।
0: हे सुमंत, कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है। राम कौशल्या, श्रवण कुमार की कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है। राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा, हमें धिक्कार है। प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा।
2: और रघुनंदन प्राण प्रिय के तुम बिना जियत बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर पितु चित जातक जलधर आराम आराम आराम।
1: महाराज महाराज महाराज।

राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातः काल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं,

0: कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते। उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पुर पगु थारो।
2: तात, तात,
1: भरत,
2: तात,
1: भरत,
2: अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
2: पापिन सब ही भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
1: बेटा,
2: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो, तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विदिशन कछु न बसाए।
1: बेटा,
2: हाय, जब तय कुमत कुमत जी अठयउ खंड खंड होई हृदय न गयउ, परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परेउ न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी।
1: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
2: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई, आंखें ओटी ओटी बैठ ही जाए।
1: बेटा,
3: तू रोक भी।
2: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
1: हे पुत्र, तुम धैर्य धरो।
2: जननी, जे अघ मात पिता सुत मारे, काई गोठ बहुसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत महीपति बाहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कभी कही, ते पातक मोहि हो विदाता।
1: बेटा,
2: जो यहु हो मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, ते कई गति मोहि देउ विधि, जो जलनी मत मोर।
1: बिधु बिष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बिरागी, भये ज्ञानु परु।

0: मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
1: अस कही माँ तू भरत हिये लाए, धन पय स्रवही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
2: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अस विचार के ही देइए दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
3: लेकिन
2: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण। उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
3: आप कह तो रहे हैं पर
2: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
0: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
3: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राज के ही लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
0: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
2: वत्स, कौशल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं। उठो और पश्चाताप मत करो।
3: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं। किंतु आपने दारुण दीनता, कहूं सब ही सिरुनाई। देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरन न जाए। आन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक इहै मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही।
4: धन्य धन्य है महाराज भरत,
5: धन्य है महाराज भरत।
3: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
4: महाराज भरत की जय। महाराज भरत की जय।
1: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई। सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी

तहां ही परस्पर भा बढ़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

राम अवध जब आएंगे, मेरे राम अवध जब आएंगे। पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी। पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी। पूछे सिंहासन के खड़ाऊं

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਵਨ ਦਿਖਾਵੂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਕੋ ਦਿਧਾਮ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

0: भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण अपमन अपन राम
1: अपन राम
0: हरि राम अपन राम हरि राम

अपने राम को दिखाओ।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग।

0: सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।